ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ वेव्स ओटीटी ऐप पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने

0: कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सृजन, निर्माण, विकास संकल्पों की सक्रियता और दृढ़ता से आधार पाते हैं। मुश्किलें अक्सर हौसलों के आगे पस्त हो जाती हैं और कठिनाइयों के आगे ही नई इबारत गढ़ी जाती है।

हर एक दिन प्रभात की बेला में स्वर्णिम रश्मियों की उजास लिए चेतना को जागृत करने का आह्वान लिए आता है। ये दिन प्रतिपल बढ़ रहे हैं समय काल के साथ। हासिल सबका अपना है, क्या पाते हैं और किस कीमत पर।

प्रार्थना मन की शांति के लिए ही नहीं वरन प्राणी मात्र के कल्याण की भी द्योतक है। इसी भाव के साथ उस अनादि अनंत का स्मरण।

ईश्वरीय कृपा हर ओर अपने विविध रूपों में विद्यमान है। अनगिनत अनंत है रूप उसकी कृपा के, वो सब सहज स्वीकार्य कहाँ होती है मन को। लालसा तो होती है जो अप्राप्य है उसकी, चाहत होती है वो जो सांसारिकता के समीकरणों से उपजा है।

जीवन का अर्थ, आधार और सार सबका अपना है, अपनी दृष्टि और अपनी विवेचना है। इसमें जब भोला विश्वास और निर्मल मन शामिल हो जाता है, तब सब सहज साध्य है।

0: नर नारी सुख ही सुख पाए,
1: नाम निरंतर जपते जाए, नर नारी सुख ही सुख पाए।
0: अमृत रस की

वंदना में अभी आपने सोनाली जलोटा, शर्मा बंधु, शंकर महादेवन और समूह स्वर में ये गीत सुने।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर अनुराधा पोडवाल का था और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, विषय है आराध्य, आलेख वसंत निर्गुणे का है।
1: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा के आराध्य केवल और केवल गिरधर गोपाल हैं। तुलसी का माथा तो तभी अपने भगवान के चरण कमलों में झुकता है जब उनके हाथ में धनुष बाण हो, अन्यथा वे राम को भी राम मानने को तैयार नहीं हैं। सूरदास अपने कृष्ण को बाल रूप में ही देखना चाहते हैं, ये कृष्ण को बड़ा होने ही नहीं देना चाहते हैं। कबीर अपने निर्गुण ब्रह्म को राम के रूप में देखना चाहते हैं। भक्त किसी न किसी रूप में हरि को भजना चाहते हैं। निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले संत सिंगा जी मानव मात्र को कहते हैं, खेती खेड़ो रे हरि नाम के, जा में छे मुक्तो लाभ। हरि और राम उसी निर्गुण ब्रह्म के नाम हैं। भक्ति मार्ग में आराध्य का सबसे बड़ा महत्व है। आराध्य का भक्त से ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि फिर उसे आराध्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आराध्य के कारण ही भक्ति की दो धाराओं का प्रादुर्भाव हुआ, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में परब्रह्म को निर्गुण निराकार ईश्वर की समाराधना की जाती है। सगुण के केंद्र में विष्णु और उनके अवतारों की आराधना को महत्व दिया जाता है, जिनके आकार प्रकार और गुणों की व्याख्या प्रशंसा की जाती है। निर्गुण भक्ति में आराध्य की कोई रूपरेखा नहीं होती। रूप ना ही, रेखा ना ही है कुलगोत, बिन देह को साहब मेरो झिलमिल देखूं ज्योत। वह निराकार रूप में सब में समाया है, उसकी व्याख्या करना मुश्किल ही नहीं बल्कि उसे पाने के लिए योग साधना का कठिन मार्ग अपनाना पड़ता है। दोनों ही भक्ति मार्गों में अपने आराध्य को पाने का भरसक प्रयत्न होता है। भक्ति काल में अनेक संत साधकों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने आराध्य की

0: समर्पित रूप से जीवन भर आराधना की और उस परमेश्वर के दर्शन किए या उनकी उपस्थिति अपनी आत्मा में महसूस की जिससे उनके मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा पाने का उपाय किया। भक्ति में आराध्य से आराधक को इस निर्वाणी पद को पाने की होड़ लगी दिखाई देती है। आराधक की भक्ति में भजन और प्रार्थना का अनन्यतम महत्व है। आराध्य भी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। आराधक अति भावुकता में कविता भी करने लगता है और भक्ति के अतिरेक में नाचने भी लगता है। सूरदास, रैदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे बड़े आराधक कहे जा सकते हैं। इसमें आराधकों को अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं होती। सूरदास जन्मांध थे और रैदास अक्षर ज्ञान से वंचित थे। ऐसे आराधक अपनी अनुभूति की तीव्रता में शब्द और भाषा से ऊपर उठकर भक्ति और ज्ञान के चरम को पा लेते हैं, जहां बड़े बड़े योगी तपस्वी भी नहीं पहुंचते। ऐसे में कई संत ऐसी दुर्लभ रचना करने में सक्षम होते हैं जो उनकी साधना का परिणत तो होता ही है, साथ ही शब्द साहित्य का भी प्रतिमान बन जाता है। तुलसी की विनय पत्रिका और श्री रामचरितमानस ऐसी ही कालजयी रचनाएं हैं। आराध्य को आराधक अपने भीतर महसूस करता है और उसे आत्मा में प्रतिष्ठित कर लेता है। इसमें आराध्य को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो कुछ करना होता है वह आराधक को ही करना होता है। इस अवस्था में आराधक अपने आप को आराध्य में विलीन कर लेता है। तब आराध्य और आराधक उस अद्वैत को प्राप्त कर लेते हैं जो उनकी भक्ति की अंतिम नियति होती है। ऐसे तादात्म्य में ना आराधक का अस्तित्व रहता है और ना आराध्य का, दोनों एक हो जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था आराध्य, आलेख वसंत निर्गुणे का था और वाचन स्वर डॉक्टर अरविंद सोनी का। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए खरीफ फसलों की बुवाई विषय पर, इसे फिर से सुन ले। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए खरीफ फसलों की बुवाई हेतु उन्नत कृषि यंत्र विषय पर जानकारी डॉक्टर सी आर मेहता से।
2: बताना चाहता हूँ, जैसा कि आमतौर पर आजकल ये देखने में आया है कि खेत में बीज की बुवाई के लिए मजदूर की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती जा रही है और आगे और कम होने की आशा है, तो इस समय हमें कृषि उपकरणों का उपयोग बहुत ही करने की ज़रूरत है। इस दिशा में ज़्यादातर देखने में यह आता है कि किसान अभी भी बीज का छिड़काव करते हैं, तो उसके बजाय मेरा ये कहना है कि उनको जो भी कृषि उपकरण आपको उपलब्ध हो सके उनका उपयोग करके आप कतार में बुवाई करें। उस दिशा में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार के कृषि मशीनरी व उपकरण विकसित किए गए जो कि बुवाई का कार्य करते हैं। अभी अपन मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में खासतौर से खरीफ फसलों में सोयाबीन व धान की रोपाई या बुवाई होती है, तो उस दिशा में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो सीड ड्रिल होते हैं, अभी कई किसान अभी भी सीड ड्रिल यूज करते हैं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि सीड ड्रिल के साथ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी उपयोग में लाए। उससे क्या होता है कि खाद और बीज दोनों की एक साथ बुवाई और हो जाती है और उससे आपका समय भी बचता है और आपका बीज भी कम लगता है। दूसरा, आजकल ये हो गया है कि नए नए प्लांटर्स भी आ गए हैं खासतौर से महंगे बीजों की बुवाई करने के लिए, या आपको एक फसल के बीच में दूसरी फसल लगानी है तो आप एक ही मशीन से इंक्लाइन प्लेट प्लांटर को उपयोग करके आप दो फसल एक साथ बो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग बॉक्स होते हैं, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग आप सीड डाल दो और उसमें प्लेट लगी होती है, प्लेट में आपकी बीज की साइज़ के हिसाब से आप प्लेट लगा दें और उसके बाद आप इंक्लाइन प्लेट प्लांटर से भी पर्टिकुलर बीज की बुवाई कर सकते हैं। अब जैसे सोयाबीन यहाँ बहुत से होती है, तो सोयाबीन में भी मेरा ये आपसे अनुरोध है कि एक तो इंक्लाइन प्लेट प्लांटर यूज करें। इंक्लाइन प्लेट प्लांटर में भी आजकल रेज बेड प्लांटर भी आने लगे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में क्या होता है कि कभी अति वर्षा होती है, कुछ दिन तक बिल्कुल सूखा रहता है, तो आप इंक्लाइन प्लेट

प्लांटर या रेज बेड फ्रो प्लांटर यूज करें जिसमें भी इंक्लाइन प्लेट लगी होती है, तो उससे बुवाई करने से यह होगा कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो जो नाली होगी उसके में से पानी निकल जाएगा, और कम बारिश होगी तो जो नाली है उसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम आएगा। दूसरा, धान की रोपाई भी मध्य प्रदेश में काफ़ी किसान कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा उनसे अनुरोध है कि आजकल राइड ऑन टाइप और सेल्फ प्रोपेल राइस ट्रांसप्लांटर विकसित हो गए हैं और वो कस्टम हायरिंग पर अवेलेबल है, तो किसान भाई उनको कस्टम हायरिंग पर राइस ट्रांसप्लांटर लें। नहीं तो क्या होता है कि अगर मजदूरों से बुवाई रोपाई करेंगे धान की, तो मजदूर की एक तो उपलब्धता मुश्किल है, अगर उपलब्ध भी होंगे तो महंगे मिलेंगे, और अगर आप मशीन को कस्टम हायरिंग पर लेकर आप अपने ट्रांसप्लांट राइस

0: आजकल और भी सोफिस्टिकेटेड नई नई मशीनें भी विकसित की है जिसमें बीज से बीज और प्लांट से प्लांट के बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। वो खासतौर से महंगे बीजों जैसे कपास भी मध्य प्रदेश में कुछ किसान बोते हैं तो उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि बीज भी बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होती है और फिर उसमें आपकी बीज की लागत कम होती है और पैदावार भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी जानकारी के लिए देना चाहूँगा कि आजकल धीमे धीमे सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड सीडर्स भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन उनको अभी अडॉप्शन या फील्ड लेवल पर आने में समय लगेगा, लेकिन उस दिशा में भी काम चल रहा है। तो मेरा अंत में किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि बीज की छिड़काव न करें बल्कि बीज की बुवाई कतार में प्लांटर या सीड ड्रिल के उपयोग से करें।
1: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे खरीफ फसलों की बुवाई हेतु उन्नत कृषि यंत्र विषय पर जानकारी डॉक्टर सीआर मेहता से। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। सुबह के 6:55 होने को है। अब समाचार दिल्ली केंद्र से।
3: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः, पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं, तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसङ्ख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-2000 राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-2000 राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहाय, पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः, सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु, उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथा

0: श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में

0: दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में सुनिएगा, सौर ऊर्जा के भविष्य पर ऊर्जा विकास निगम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभारी तरुण स्वरूप से की गई चर्चा। विश्व दूर संचार दिवस पर निदेशक डीओटी गोपाल कुर्मी से की गई चर्चा होगी। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर भोपाल सीएमएचओ के डॉक्टर मनीष शर्मा से की गई चर्चा आप सुनेंगे। सुरमई सवेरा कार्यक्रम में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस पर की गई बातें होंगी सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर सुनिएगा मोहम्मद रहीमुद्दीन के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण का प्रसारण सुबह 9:30 पर करेंगे। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10:00 प्रसारित होगी। सुबह 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में आज होगा असमिया भाषा का गीत रचना सतीश दास की। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। शाम 7:30 पर सजीव फोन इन हेलो ग्राम सभा का प्रसारण करेंगे। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण होगा। आपकी फरमाइश मध्याह्न 12:00। मध्याह्न 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी। महिला कार्यक्रम दिन में 1:00 होगा। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम दिन में 1:45 पर प्रसारित होगा। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। ये चारों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की होगी। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में डगर विकास की कार्यक्रम रात 8:15 पर प्रसारित करेंगे। विषय होगा पीएम श्री योजना, प्रस्तुतकर्ता होंगे मनीष गजबिये। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात 10:00 आप सुनेंगे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: आपको पुनः याद दिला दें, डगर विकास की कार्यक्रम रात 8:15 पर आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। विषय होगा पीएम श्री योजना, प्रस्तुतकर्ता मनीष कचपिए। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर प्रसारित होगा। सजीव फोन इन हेलो ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:30 से रात्रि 8 के बीच होगा। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में सुबह 10:05 पर असमिया भाषा का गीत आप सुनेंगे। सिंधियत जी सुरहान ये सिंधी कार्यक्रम सुबह 9:30 पर प्रसारित होगा। सुरमई सवेरा कार्यक्रम सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे। इसमें सुनिएगा विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस पर विशेष। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्ययोजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: आज नवाचार और तकनीक का जमाना है, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन

0: का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकासखंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छैगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमररी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवां में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारा सिवनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजाति समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्ति शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

आकाशवाणी भोपाल के प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं, आपका साथी विकास तिवारी, और आज बात एक ऐसे विषय की जो हमारे घर के बजट, देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों से सीधे जुड़ा है। विषय है ईंधन की बचत, राष्ट्र की शक्ति।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील की है। उनका संदेश स्पष्ट है, ईंधन बचाना केवल व्यक्तिगत बचत नहीं बल्कि राष्ट्रहित में योगदान है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जहां तक संभव हो निजी वाहनों के बजाय बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यदि कार से यात्रा जरूरी हो तो कार पूलिंग अपनाएं ताकि एक ही वाहन में अधिक लोग यात्रा कर सकें और ईंधन की खपत कम हो। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही है। जिनके पास ई व्हीकल उपलब्ध हैं वे अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया गया है। साथियों भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में ईंधन की हर बूंद बचाना, विदेशी मुद्रा की बचत, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें, जहां तक संभव हो ईंधन बचाएं, समझदारी से चलें, जिम्मेदारी से बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

और श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज के नमस्कार भोपाल में क्या कुछ खास लेकर हम आपके लिए आए हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, इस बारे में हमें जानकारी देंगे भोपाल के CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा। और आज विश्व दूरसंचार दिवस भी है, इस मौके पर हम बातचीत करेंगे DOT के निदेशक गोपाल कर्मी से। और सौर ऊर्जा के महत्व को लेकर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऊर्जा विकास निगम के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभारी तरुण सारस्वत से। और आपकी पसंद के नए पुराने फिल्मी तराने तो होंगे ही, समाचार पत्रों पर होगा क्रम सुर्खियां। तो आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले समाचार पत्रों की कुछ खास खबरों पर। सोने पर लिमिट के बाद चांदी आयात पर रोक। कीमती धातुओं पर भारतीय कस्टम ड्यूटी लगाने के 3 दिन बाद केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना

जारी कर दी है। और विश्व दूरसंचार दिवस पर उससे जुड़ी हुई एक खबर है कि एक औसत मोबाइल यूज़र हर महीने 31 जीबी डेटा का इस्तेमाल कर रहा, वर्ष 2020-21 में 14 जीबी था। भोपाल में डेटा खपत 5 साल में 120% से ज़्यादा बढ़ गई है। 5 वर्षों में भोपाल की डिजिटल जीवन शैली में जो बदलाव आया है वह किसी क्रांतिकारी बदलाव से कम नहीं है। दूर संचार नियामक प्राधिकरण और अन्य हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल के लोग अब पहले की तुलना में दोगुने से ज़्यादा डेटा खर्च कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में डेटा खपत में करीब 120% का इजाफा देखा जा रहा है। इस उछाल का सबसे बड़ा कारण 5G नेटवर्क में इजाफा होना है। और कर्मचारियों की छुट्टी मंजूरी के नियमों में बदलाव, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टी के नियमों में बदलाव किया है। जिला स्तर पर जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 120 दिन के अवकाश की मंजूरी अब जिला स्तर पर कार्यालय प्रमुख ही दे सकेगा। 120 दिन से ज़्यादा के मामले कलेक्टर के पास जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 120 दिन के अवकाश की मंजूरी जिला कलेक्टर दे सकेंगे। इससे अधिक की अवधि के लिए फाइल विभागाध्यक्ष के पास जाएगी। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की किसी भी अवधि की मंजूरी सीधे विभागाध्यक्ष दे सकेंगे। संभागीय स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अवकाश की मंजूरी संभागीय कार्यालय प्रमुख दे सकेंगे। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के 60 दिन के अवकाश की मंजूरी क्रमशः संभागीय प्रमुख और संभागीय आयुक्त दे सकेंगे। 60 दिन से अधिक की स्वीकृति के मामले कमिश्नर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के पास जाएंगे और चतुर्थ श्रेणी के पूरे अधिकार कार्यालय प्रमुख और तृतीय श्रेणी के अधिकार संचालक कोष एवं लेखा के पास होंगे। और जनजाति संग्रहालय में आज दोपहर 2 बजे से साप्ताहिक सांस्कृतिक गतिविधि संभावना का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैतूल के शांतिलाल काशड़े व साथी कोरकू जनजाति ढांडल नृत्य प्रस्तुत करेंगे। और एक और खबर है, इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर की ओर से 17 मई को IBGA कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह एक दिवसीय कॉन्क्लेव नीलवाड़ स्थित एक निजी होटल में होगा, जिसमें ज्वेलरी और बुलियन कारोबार से जुड़े उद्योगपति व्यापारी निवेशक शामिल होंगे।

और मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की प्रतिभाशाली खिलाड़ी खुशी दाभाड़े फ्रांस में होने वाली एफआईई महिला ईपी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 22 से 24 मई तक आयोजित होगी। और अलाप म्यूजिकल ग्रुप द्वारा अलाप सीजन 3 के अंतर्गत गीतों भरी विशेष संध्या का आयोजन रविवार को एमपी नगर स्थित एक निजी होटल में किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 3 बजे से होगा। इस विशेष संगीत संध्या को आशा भोसले की याद को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में उनके द्वारा गाए सदाबहार और लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियाँ विभिन्न गायक कलाकारों द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप दी जाएंगी।

और खबर खेल से जुड़ी हुई। 100वें मैच में रिकॉर्ड बैटिंग, मैच 60 घरेलू मैदान ईडन पर 247 का स्कोर बनाकर जीता है कोलकाता, प्ले ऑफ द रेस में कायम। आईपीएल 19 में बल्ले से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया है। घरेलू मैदान ईडन गार्डन पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में पहले बल्लेबाजी मिलने पर 247 का विशाल स्कोर बनाया। यह लीग इतिहास में उसका तीसरा सबसे बड़ा व गुजरात के खिलाफ किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। और फातिमा सना ने 15 गेंद में ठोका सबसे तेज अर्धशतक। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला टी20 इंटरनेशनल में

इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने मात्र 15 गेंदों में अर्ध शतक पूरा कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इसी के साथ समेटते हैं सुर्खियों को यहीं पर, और अब वक्त है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा नगमा।

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं अंबिका सिंह और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: श्रोताओं, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में होने वाला तनाव उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को जल्दी बुला लेता है। बीमारी और ज़्यादा ना बढ़ें ताकि शरीर के अन्य हिस्सों पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए दवा और नियमित संयमित दिनचर्या आवश्यक है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर आम जन को इससे बचने के लिए जागरूक किया जाता है। आइए इस दिवस के बारे में जानते हैं भोपाल के CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से।
2: देखिए, ये एक जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस होता है, हम लोग मनाते हैं इसको कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो बीमारियों का स्वरूप है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले इन्फेक्शियस डिसीज़ हुआ करती थी, आज का नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, रहन सहन से जो बीमारियाँ होती हैं इनका बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाई जा रही है। इसमें से एक ब्लड प्रेशर भी है, तो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग को समय रहते अगर हम लोग चिन्हित कर लें, उसके लक्षणों को पहचान लें और क्यों होती है, अगर वो हमने पकड़ लिया तो हम काफ़ी हद तक इन बीमारी से बच सकते हैं और इसके दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं।
3: सर, उच्च रक्तचाप किसको हो चुका है या किसको होने वाला है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं इसे?
2: जैसा मैंने बताया कि ये जो रक्तचाप है ये खासतौर से आपके रहन सहन से, आपकी जीवन शैली से परिभाषित होता है। तो जिन लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसको बोलते हैं कि जो एक जगह बैठ के रह के काम करते हैं, खाना पीना भी उनका समय पे नहीं होता है, और या फिर ज़्यादा चिकनाई वाला पदार्थ, ज़्यादा मीठा या सेवन करते हैं, वेट गेन कर रहे हैं, और ख़ासतौर से आजकल तो आपने देखा है कि बच्चों में भी हो गया है, कि बच्चों लोगों में दूसरे प्रकार का हो गया, तनाव से भी हो जाता है। तो बच्चों लोगों में आजकल पढ़ाई का तनाव, भविष्य का तनाव, जो भी कारण से तनाव पैदा कर लेते हैं, प्लस खान पीन भी रहता है उनमें, तो उनमें भी डेवलप हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसको अगर समय रहते हम लोग चिन्हित कर लेते हैं तो बिना दवाओं से भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, अगर पहले अपन का शुरुआत में ही आपको मालूम पड़ जाए तो।
3: जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें भविष्य में आने वाले समय में और किस तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं हो जाती हैं?
2: बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है और

0: इसको अगर अपन ने कंट्रोल नहीं किया तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती है, जो मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा है कि ब्लड प्रेशर से जो कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है या बीमारी ऑर्गन पीड़ित होते हैं, वो एक तो ब्रेन होता है आपका, दूसरा आपका हार्ट होता है, तीसरी आपकी किडनी होती है और चौथा आपका रेटिना होता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित करती हैं अपने को, और अगर समय रहते हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो ये फिर हमारे जो चार प्रमुख ऑर्गन है ये पीड़ित हो जाते हैं और स्वास्थ्य को समस्या उत्पन्न हो जाती है।
1: हमारे सभी सुनने वालों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि उच्च रक्तचाप होने से बचने के लिए वो क्या सावधानियां रखें, और अगर हो जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप अपने को ब्लड प्रेशर हो ही ना, ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए अपने को नियमित आहार लेना है, अपने को वजन पे कंट्रोल रखना है अपने को, और एक चीज़ और है, रेस्ट प्रॉपर करना है और तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ अगर अपने चार काम करेंगे तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। लेकिन अगर जिनको हो गया है तो उनको सबसे एक ज़रूरी काम करना है कि वो अपना नियमित दवा का सेवन करते रहें। दवाइयाँ डॉक्टर से बिना पूछे कभी भी बंद नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ के सलाह मशवरा करते रहें, और चूंकि अब ये लाइफ लॉन्ग हो जाती है तो आपको समय समय पर डॉक्टर से अपना चिन्हित करते रहें, इलाज कराते रहना है, और कोई अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं, दवाई से भी हो सकते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर से भी हो सकते हैं, तो उसको डॉक्टर को दिखाते रहें और उसका समय पर उपचार कर लेंगे तो हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन, जैसा मैंने बताया कि या तो स्ट्रोक होता है या आपका हार्ट अटैक पड़ेगा या किडनी फेलियर होता है या फिर आपकी आंखों में जाएगा तो रेटिना वो डिटैच हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का हम समय रहते अपन पहचान लेंगे और उपचार सही लेते रहेंगे तो इनके कभी हमको दुष्प्रभाव झेलने नहीं पड़ेंगे।
1: सर, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू डियर।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा से विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी अगर चाहते हैं कि उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां आपको ना घेरें तो अपनी दिनचर्या नियमित रखें, आराम करें, तनाव न लें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं।

श्रोताओं, आजकल पढ़ाई, ऑफिस से लेकर लेन देन और बहुत सारे काम ऑनलाइन, इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हो रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने आम नागरिकों का जीवन काफ़ी आसान कर दिया है। आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस के मौके पर आइए बात करते हैं DoT भोपाल के निदेशक

0: गोपाल कुर्मी से और जानते हैं इस दिवस के बारे में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज हम सब विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस मना रहे हैं और आज हम 17 मई को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना इसी दिन हुई थी। इस वर्ष का विषय है डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, यानी हमारे मोबाइल इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे केवल सुविधा ही मात्र नहीं बल्कि जीवन रेखा हैं जो हमें हर परिस्थिति में जोड़े रखते हैं।
0: सर, दूरसंचार विभाग ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए किस तरह की नई शुरुआत की हैं, किस तरह के नए नवाचार किए हैं जो उनके जीवन में आनंद बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं?
1: दूरसंचार आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आप देखेंगे कोविड महामारी से लेके हमने देखा कि कैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट सब कुछ बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहा दूरसंचार नेटवर्क की वजह से। और आज हम देखते हैं कि अरबों करोड़ों जो है UPI ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दूरसंचार नेटवर्क के थ्रू। तो जैसे जैसे दूरसंचार की पहुँच बढ़ी है वैसे वैसे कुछ दूरसंचार की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा या फेक कॉल्स, स्पैम मैसेजेस और साइबर फ्रॉड जैसी चुनौतियां जो है हमारे आम नागरिकों के सामने आई हैं और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो डिपार्टमेंट ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ नागरिक केंद्रित इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिपार्टमेंट ने संचार साथी इनिशिएटिव लिया है जिसमें नागरिकों को हमने 5 से 6 मॉड्यूल्स के थ्रू एम्पावर किया है, जिसमें कि पहला जो मॉड्यूल है हमारा CIR पोर्टल, जिसमें कि नागरिक जो है अपना चोरी या गुम मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो मॉड्यूल है टैफकॉप, जिसमें कि नागरिक अपने नाम पर जारी सिम कनेक्शंस को देख सकते हैं कि कितने मोबाइल कनेक्शंस जो है उनके नाम पर चल रहे हैं। और आप उसी पोर्टल के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपको ये कनेक्शन नहीं रखना है तो आप पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको ये कनेक्शन रखना है कि नहीं रखना है। चक्षु फैसिलिटी है हमारी इसी पोर्टल पर, जिसमें जो है नागरिकों को अगर किसी तरीके से कोई धोखाधड़ी के कॉल्स, फ्रॉडुलेंट कॉल्स, SMS या WhatsApp मैसेज आते हैं तो आप उस पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। चौथा जो है हमारा नो योर मोबाइल। कई बार हम अक्सर देखते हैं कि हम सेकंड मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कहीं ना कहीं कि ये मोबाइल चोरी का है या किसी साइबर फ्रॉड या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो इस मॉड्यूल के थ्रू हम मोबाइल के IMEI नंबर को डाल के ये चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर हमारा जेन्यून है कि नहीं है। तो सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस मोबाइल नंबर की वैलिडिटी को चेक करें। इसके अलावा कई बार हमें इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं जो इंडियन नंबर्स के साथ आते हैं तो उसको भी हम इस संचार साथी के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संचार साथी इनिशिएटिव्स के थ्रू डिपार्टमेंट ने अभी तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइलों को ट्रेस किया है और लगभग 55,000 मोबाइल रिकवर किए हैं और उनके असली मालिकों को वापस लौटाए गए हैं। सिमिलरली टैफकॉप प्लेटफॉर्म जो है उस पर नागरिकों की रिक्वेस्ट के आधार पर लगभग 18 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट किया गया है और चक्षु प्लेटफॉर्म पर लगभग 50,000 से ज़्यादा जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है।
0: आम आदमी साइबर ठगी के शिकार ना हो या किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता में ना फंसें तो आप उन्हें किस तरह की सावधानियां रखने की सलाह देंगे?
1: आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको इस तरीके से कोई कॉल मैसेज या आते हैं तो आपको रुको, सोचो और एक्शन लो की मेथडोलॉजी अपनानी चाहिए। आपको इमीडिएटली किसी के भी कहने पर कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी OTP या इस तरीके से कोई बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इस तरीके से कोई फ्रॉडुलेंट कॉल्स या मैसेज आते हैं तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा संचार साथी का चक्षु प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी सस्पिशियस फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड या क्राइम हो जाता है तो आप NCRP 1930 पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि टेलीकॉम केबल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि लाइफलाइन है, तो हम सभी मिलकर जो है इस डिजिटल लाइफलाइन को और मजबूत, सुरक्षित और इंक्लूसिव बनाएं ताकि मध्य प्रदेश और भारत का हर नागरिक संकट के समय भी जुड़ा और सुरक्षित रह सके।
0: सर, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद। मैं आकाशवाणी भोपाल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इस विषय को चुना और आज 17 मई वर्ल्ड टेलीकॉम इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे पर जो है आम नागरिकों के सामने डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव्स और जो नागरिक केंद्रित जो हमारे

0: सुविधाएं जो हमने नागरिकों को अवेलेबल कराई उन सभी को आप सभी के सामने लाए। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे DOT के निदेशक गोपाल कुर्मी से बातचीत।

0: श्रोताओं, भारत के अधिकांश हिस्सों में सूर्य की किरणें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसका उपयोग कर बिजली बनाई जा रही है, खाना पकाया जा रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। घरों में लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों ने लोगों का बिजली बिल घटा दिया है। सौर ऊर्जा के भविष्य को लेकर आइए बात करते हैं ऊर्जा विकास निगम में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभारी तरुण सारस्वत से।
1: वर्तमान में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार घरेलू क्षेत्रों के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाने के लिए प्रयासरत है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि घरेलू क्षेत्रों के हितग्राहियों को लाभ पहुँचाना। अभी भारत सरकार द्वारा 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सौर संयंत्र स्थापना पर सब्सिडी दी जा रही है। अधिकतम सब्सिडी 78,000 रुपये है, जो संयंत्र स्थापना के तुरंत बाद हितग्राही के खाते में सीधे आ जाती है। और रही बात इसके भविष्य की, तो सोलर सिस्टम जब से ये लगने चालू हुए हैं तो बहुत सारी नई नई इकाइयों को, लगभग मध्य प्रदेश में अभी 1300 इकाइयाँ रजिस्टर्ड है जो सिर्फ घरेलू क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्यरत हैं। इन इकाइयों द्वारा अपने स्तर पे बहुत सारे जॉब जनरेट्स किए गए हैं, जिसके कारण प्रदेश में जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, लोगों के अगर सौर संयंत्र की स्थापना भी बढ़ी है, बहुत सारे लोगों का बिजली बिल भी जीरो हुआ है, जिससे लोगों की बचत होनी चालू हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से और सहूलतें हितग्राहियों और वेंडर को दिलाएंगे, जिससे कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को जो 6 लाख घरों में सौर संयंत्र स्थापना का टारगेट दिया गया मार्च 2027 तक, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें।
0: कितने कितने किलोवाट के ये संयंत्र घरों पर लगाए जा सकते हैं और उसमें कितने किलोवाट पर कितने रुपए की सब्सिडी है और हितग्राही को कितना पैसा इसमें खर्च करना होता है?
1: गवर्नमेंट द्वारा 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। और 3 से आप 10 किलोवाट के बीच में किसी भी रेंज के लगाएंगे, सब्सिडी अमाउंट 78,000 रुपये ही रहेगा।
0: 1 किलोवाट का अगर कोई लगाता है संयंत्र, तो उस पर उसको खुद को कितना खर्च करना पड़ता है?
1: नॉर्मली पर किलोवाट कीमत लगभग 55,000 रुपये से 60,000 रुपये के आसपास है। इसमें मोटा मोटा अगर कॉस्ट देखा जाए तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगभग 1,85,000 रुपये में लगता है। फिर वो डिपेंड करता है कि हितग्राही कभी किसी दूसरी कंपनी का पैनल चाहता है, कभी किसी दूसरी कंपनी का इन्वर्टर चाहता है, तो कॉस्ट में 5-10 हज़ार रुपये का वेरिएशन आता है। जैसे आपका 1 किलोवाट का संयंत्र है, वो आपका लगभग 60,000 का पड़ता है, तो उसमें लगभग आपको 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का जो आपका संयंत्र है, लगभग वो 1,25,000 के आसपास में पड़ता है, इसमें आपको 60,000 की सब्सिडी रहेगी। 3 किलोवाट का संयंत्र है आपका,

0: 1,90,000 रुपये का पड़ता है, इसमें आपको 78,000 रुपये की आपकी सब्सिडी रहेगी। 5 किलोवाट का जो संयंत्र है वो लगभग 2,90,000 का होता है, इसमें भी आपकी 78,000 रुपये ही सब्सिडी रहेगी।
1: इन सोलर संयंत्रों को लगवाने के लिए और शासन की योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होता है?
0: इन सोलर संयंत्र को लगवाने के लिए हितग्राही के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की है। ऑनलाइन पीएम सुगर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर जाकर के वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जैसे जैसे वो एप्लीकेशन होगा उसका MPBS के द्वारा ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, उसका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ ऑनलाइन है, इवन सब्सिडी भी डायरेक्ट हितग्राही के खाते में ऑनलाइन उसके खाते में आ जाएगी।
1: ऑनलाइन करने के लिए किस वेबसाइट पे किस एड्रेस पे जाना होता है?
0: ऑनलाइन करने के लिए www.mnre.gov.in पे जाना है। इसके अलावा ऊर्जा विकास निगम द्वारा व्हाट्सअप चैटबोर्ड भी लॉन्च किया गया है, जिसमें हितग्राही को जो भी क्वेरी है पीएम सुगर से संबंधित तो उसका वो आकलन कर सकता है, जान सकता है। व्हाट्सअप चैटबोर्ड इस प्रकार का एक डिवाइस है जिसमें अगर हितग्राही को नहीं पता है कि उसको अपने घर पे कितने किलोवाट का प्लांट लगवाना है तो उसमें बस वो अगर अपना रूफटॉप एरिया डाल दे या अपनी डिमांड डाल दे कि मेरा 500 यूनिट की खपत होती है तो वो चैटबोर्ड उसको सजेस्ट कर देगा कि आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है। चैटबोर्ड उसको उसकी लागत भी बताएगा, उसके फ़ायदे भी बताएगा, उसका जनरेशन भी बताएगा, इवन सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो जो कंपोनेंट लगते हैं वो सारी चीज़ों की जानकारी देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर भी वो लिंक कराएगा और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन कैसे करना उस सबका प्रोसीजर भी व्हाट्सअप चैटबोर्ड में दिया हुआ है।
1: सोलर एनर्जी से बिजली के अलावा और क्या क्या सोलर का भविष्य आगे?
0: जैसे कि MP गवर्नमेंट का भी फोकस है कि सोलर प्लांट जो डोमेस्टिक में लग रहे हैं उसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ई व्हीकल्स हैं उनके भी सब स्टेशन बढ़े, ई व्हीकल्स का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अभी सोलर कुकर्स को भी पुनर्स्थापित करने पर विचार कर रही है। आगामी समय में ऊर्जा विकास निगम द्वारा शीघ्र सोलर कुकर के लिए भी टेंडर्स वगैरह किए जाएंगे।
1: हमारे सभी सुनने वालों से सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इसके क्या फ़ायदे आप उन्हें बताना चाहेंगे?
0: मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके नवकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। ये ऊर्जा हमारे देश की ईंधन को तो बचाती है, साथ ही आपको एक स्वच्छ ऊर्जा सुलभ रूप से मिलती है, जिसके कारण आपकी जो व्यय हो रहा है MPV से पावर परचेज खरीदने में तो आपकी व्यय में कमी आएगी। ये सोलर प्लांट से आपकी लागत 5 से 6 वर्षों में निकल आती है, उसके बाद ये प्लांट आपको 20 साल तक सर्विस देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी यूनिट बन रही है वो आपकी सेविंग्स में काउंट होगी। इसको आप अपना इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपने जो प्लांट लगाया वो आपको हर महीने मासिक बचत करके देगा। 5 किलोवाट का प्लांट लगभग आपके 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ बचा के देगा, 3 किलोवाट का प्लांट आपके 3.5 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ बचा के देगा। तो जितना हो सके गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द अपने घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगवाइए।
1: हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे ऊर्जा विकास निगम में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभारी तरुण सारस्वत से बातचीत। तो श्रोताओं, यदि आपके घर का बिजली बिल भी भारी भरकम आ रहा है तो सोलर संयंत्र जरूर घर पर लगाएं, आपका बिल निश्चित तौर पर कम होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय

0: कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश

0: 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के

0: प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
2: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
2: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also

0: Elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala Temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ नीतिका वर्मा। और आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस पर केंद्रित है ये कार्यक्रम। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि दूरसंचार आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। ऐसे समय में दूरसंचार और सूचना समुदाय दिवस पर मनाया जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसी आयोजन के साथ हम दूरसंचार सेवाओं से की जाने वाली अपेक्षाओं पर एक बार फिर से विचार करते हैं और साथ ही उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम भी इसमें उठाए जाते हैं। और आज सभी उपभोक्ताओं और दूरसंचार सेवाओं से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन है और विश्व दूरसंचार और सूचना समुदाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ हम आपको देते हैं।

श्रोताओं, टेलीग्राफ की खोज होने के बाद उसकी उपयोगिता के कारण तेजी से उसका फैलाव हुआ। विश्व भर में बहुत जल्दी टेलीग्राफ सेवाएं फैल गईं। तब यह महसूस किया जाने लगा कि इन सारी टेलीग्राफ सेवाओं में वैश्विक स्तर पर एकरूपता हो। इसके लिए 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद ITU संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष एजेंसी है, जो पूरे विश्व में दूरसंचार के क्षेत्र में सभी आयामों में एकरूपता सुनिश्चित करती है।

श्रोताओं, पहले केवल टेलीफोन और टेलीग्राफ हुआ करते थे, जो केवल संवाद का माध्यम थे। धीरे धीरे सूचना का महत्व बढ़ता गया। सूचनाओं के विभिन्न प्रकार होने से और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास होने से सूचना प्रेषण के माध्यम में दूरसंचार की अनिवार्य उपयोगिता बढ़ती गई। इस तरह एक सूचना समुदाय भी तेजी से विकसित होता गया। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समुदाय दिवस को एक साथ जोड़ते हुए 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 17 मई 2007 के इस आयोजन के साथ विश्व दूरसंचार और सूचना समुदाय दिवस से किया जाने लगा और इस प्रकार इसके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ा और संचार व सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से हो रहे विकास के साथ इसका महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है।

ITU यानी इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन। इसका मुख्य कार्य सारे विश्व की दूरसंचार सेवाओं को एक रूप रखना है। यह संचार और दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का नियमन, रेडियो आवृत्तियों को निश्चित करने और निर्दिष्ट रेडियो आवृत्ति का आलेखन करने का कार्य भी ITU के कार्यक्षेत्र में आता है।

ITU यानी इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन में कुल 193 देशों के 900 से अधिक संगठन सदस्य हैं। भारत प्रारंभ से ही ITU का महत्वपूर्ण सदस्य है।

कंपनियां, उनकी कंपनियां और टेलीकॉम से जुड़े अन्य संगठन आईटीयू के सदस्य हैं। आईटीयू के सबसे बड़े पदाधिकारी का नाम महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल है। इस समय आईटीयू के महासचिव डोरीन बोगडान मार्टिन हैं। भारत के मनोहर बालाजी सरवटे ने 1965 से 1967 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ के चौथे महासचिव के रूप में कार्य किया। अनेक भारतीय इंजीनियरों ने आईटीयू में अनेक उच्च पदों पर कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। श्रोताओं, आज विश्व दूरसंचार और सूचना समुदाय दिवस पर विशेष है ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस पर विशेष बातें जारी रखेंगे 9 बजे से। इस बीच पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ कल संपन्न हुई। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कल जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। CBI के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोंक कला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस पर विशेष। मैं हूं आपके साथ नीतिका वर्मा। कार्यक्रम है सुरमई सवेरा। श्रोताओं, हर साल विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस की एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है और उस थीम के आधार पर वर्ष भर गतिविधियां की जाती है। डिजिटल शक्ति को समग्र विकास के लिए उपयोगी बनाने पर बल दिया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की थीम में डिजिटल सामर्थ्य को महत्व प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 2026 की थीम सुदृढ़ और सुसंबद्ध विश्व के लिए डिजिटल जीवन रेखाओं का सशक्तिकरण है। यह थीम एक ऐसे मुद्दे को लेकर रखी गई है जिसमें तकनीक के साथ मानवता का समावेश भी किया गया है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज के वैश्वीकरण के युग में दूरसंचार सेवाएं हमारी मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। इन सबको अबाध दूरसंचार सेवाएं न्यूनतम दर पर मिल सके और इसकी आश्वस्ति के साथ उपलब्ध कराया जाना भी एक बड़ी चुनौती है। यह थीम जो है इस वर्ष की, यह थीम अल्प विकसित देशों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त करने के लक्ष्य की ओर इंगित भी करती है। तभी एक सुदृढ़ और सुसंबद्ध विश्व की कल्पना साकार हो सकती है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सरकार भी लगातार किफ़ायती और विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं पर काम भी कर रही है।

0: भी नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: So girls, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चाहे कोई भी मौका हो, संदेश देने और लेने के लिए उपयोग में आने वाले जो हमारे दूरसंचार के माध्यम हैं हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। तरीका कोई भी हो, सभी का मूलभूत उद्देश्य संदेश संप्रेषण ही है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे गति दी है और भी अपनी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ाने में हुए लगा हुआ है। कार्यक्रम में संदेश के माध्यमों से ही हम विराम लेंगे और विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस विशेष को यहीं विराम देते हैं। अनुमति चाहते हैं, नीतिका वर्मा को दीजिए अनुमति। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार। और कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपके लिए है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन EIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

सुबह के 9:15 हुए हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे मोहम्मद रहीमुद्दीन के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये लोक भजन।

0: और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये बिरह गीत।
1: भेज पतिया हो ना।

लोकगीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु जो कार्यक्रम शुरू कंदासीं हिक ॼाण सां। हर साल वांगुरु हिन साल बि 18 मई ते पूरी दुनिया में विश्व संग्रहालय दिवस मल्हायो वेंदो। हीउ सिर्फ़ु हिकु दिवस न आहे, पर असांजी सभ्यता, संस्कृति ऐं विरासत जे एतराम जो हिकु ख़ासि मौक़ो आहे। संग्रहालय उहा जॻहि आहे जिते हर कला मुस्कराईंदी आहे ऐं वक़्तु पंहिंजूं कहाणियूं बयां कंदो आहे। जॾहिं असां कंहिं संग्रहालय में दाख़िल थींदा आहियूं, तॾहिं ई असांखे इहो महसूसु थींदो आहे त ॼण असां वक़्त जे सफ़र ते निकिता आहियूं। उते रखियल पुराणियूं मूर्तियूं, तारीख़ी दस्तावेज़, नायाब चित्रकारी, पुराणा सिक्का, हथियार, कपड़ा ऐं सांस्कृतिक विरासत असांखे उन्हनि दौरनि सां वाक़िफ़ु कराईंदी आहे जिन बारे में असां सिर्फ़ु किताबनि में पढ़ियो हूंदो आहे। दोस्तो, संग्रहालय सिर्फ़ु शयुनि जो संग्रह न आहे, पर उहे असांजी पहचान जो हिकु आइनो आहिनि। उहे असांखे इहे ॿुधाईंदा आहिनि त असांजा जेके बुज़ुर्ग हुआ उहे कीअं रहंदा हुआ, किथे रहंदा हुआ, उन्हनि जी रहणी सहणी कहिड़ी हुई, उन्हनि जी कला, विज्ञान ऐं संस्कृति केतिरी मालामाल हुई। अॼु जे दौर में संग्रहालय जी अहमियत एतिरी वधी वई आहे कि हाणे सिर्फ़ु तारीख़ खे महफ़ूज़ रखण तक सीमित न आहे, पर तालीम, तहक़ीक़ ऐं प्रेरणा जा मर्कज़ बि थी विया आहिनि। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑडियो विज़ुअल ज़रियान, इंटरएक्टिव डिस्प्ले जे माध्यम सां संग्रहालय नई पीढ़ीअ खे पंहिंजी तरफ़ आकर्षित करे रहिया आहिनि। पूरी दुनिया में संग्रहालय अमन, संवाद ऐं सांस्कृतिक एकता जी निशानी आहे। उहे मुल्कनि, भाषाउनि ऐं सरहदनि खां परे इंसानी सभ्यता जी ख़ासी विरासत खे संभालनि था। संग्रहालय दिवस असांखे इहो पैगाम ॾींदो आहे त असांखे पंहिंजी विरासत खे कीअं संभालणु घुरिजे, उन जी अहमियत खे कीअं समुझणु घुरिजे। हिकु समाज तॾहिं ई मज़बूत थींदो आहे जॾहिं उहो पंहिंजी तारीख़ जो एहतराम कंदो आहे। संग्रहालय असांखे पंहिंजी जड़ुनि सां जोड़णु ऐं उन जी राह ते हलणु सेखारे थो। अचो, हिन संग्रहालय दिवस ते असां इहो प्रण कंदासीं कि पंहिंजी संस्कृति ऐं विरासत खे महफ़ूज़ रखण में असां बि पंहिंजो योगदान ॾींदासीं। त दोस्तो, इन ॼाण खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जो ॻायल हीउ सुहिणो ऐं प्यारो गीतु।

की न कटाए ओ नकीना लेला नैलन जी या सनड़ी साड़ी पाए नकी लाल लिपस्टिक लबन ते नकी मुँह ते रूज लगाए यो पर्स प्लास्टिक जो खणी वन रोज न शॉपिंग लाए ओ चरी 14 कैरेट सोन जा कूड़ा जेवर की न घड़ाए

दोस्तों, हर साल 21 मई ते भारत भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं अमन, इंसानियत, भाईचारे ऐं मुल्क जी एकता जो पैगाम ॾींदो आहे। ही ॾींहुं आतंकवाद जे ख़िलाफ़ आवाज़ खणणु, मासूम ज़िंदगियुनि जी क़ुर्बानीअ खे यादि करणु ऐं नौजवाननि में जागरूकता पैदा करण लाइ ही मल्हायो वेंदो आहे। आतंकवाद सिर्फ़ु हिकु मुल्क या हिकु समाज लाइ ख़तरो न आहे, पर ही पूरी इंसानियत लाइ हिकु गंभीर चुनौती आहे। जिते आतंकवाद हूंदो आहे, उते अमन ख़तमु थी वेंदो आहे, बेगुनाह ज़िंदगियूं तबाह थी वेंदियूं आहिनि ऐं समाज में डपु ऐं नफ़रत फैलिजी वेंदी आहे। भारत में ही दिवस ख़ासि तौर सां उन मासूम माण्हुनि खे यादि करण लाइ मल्हायो वेंदो आहे, जेके आतंकवादी घटनाउनि में पंहिंजी जान गवाए चुका हूंदा आहिनि। अॼु जे दौर में ज़रूरत आहे त असां पंहिंजे नौजवाननि खे अमन, सहनशीलता ऐं इंसानियत जो सबक ॾियूं। समाज में नफ़रत जे बदिले मोहबत ऐं अहिंसा जे बदिले भाईचारे खे वधायूं। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस असां सभिनी खे ही इहो ई संदेश थो ॾिए त असां मुल्क जी सुरक्षा, एकता ऐं अमन लाइ हिकजुट थी करे कमु कयूं। अचो असां बि इहो प्रण कयूं कि हर क़िस्म जी हिंसा, आतंकवाद ऐं नफ़रत जे ख़िलाफ़ मज़बूतीअ सां बीहंदासीं ऐं अमन, इंसानियत जो पैगाम पूरी दुनिया में फैलाईंदासीं। दोस्तो, हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं महेश चंद्र जो ॻायल ही प्यारो गीतु।

0: दोस्तों छुट्टियूं हली रहियूं आहिनि, ॿार पंहिंजा बस्ता फिटी करे मौज पिए था माणनि। छुट्टियुनि में त सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि यादि ईंदी आहे, नानीअ जो घर ऐं नानीअ जूं आखाणियूं। हाणे त मोबाइलुनि जो ज़मानो अची वियो आहे, ॿार पंहिंजी मोबाइलुनि में ई मस्तु रहंदा आहिनि। पहिरियों त कीअं नानी ॾाॾीअ खां आखाणियूं ॿुधी पंहिंजो ॾींहुं कटिबो हो, किथे रहियो आहे उहो ज़मानो। पर मां त इहो ई चवंदसि की पंहिंजे ॿारनि खे नानियूं ॾाॾियुनि जे अॻियां विहारे उन्हनि खे आखाणियूं ज़रूरु ॿुधारायो। त अचो असां बि अनुराधा लालवाणीअ जी आवाज़ में ॿुधूं था हिकु आखाणी।
1: कहाणीअ जो सिरो आहे तर्पण। आख़िर नानीअ जे वञण खां पोइ सभिनी खे ॾाढो ॾुख थियो। सभिनी अखियुनि मां थोरा थोरा ॻोढ़ा वहाया। बसि नानी जूं नानीअ जूं यादगिरियूं ई बाक़ी रहिजी वियूं। नानीअ खे पुटु न हुयुसि, सिर्फ़ु टे धीअर अंजू मंजू संजू हुयूं। ॾोहिटो ऐं पाड़ेसिरी पुटु नारायण, जेको ॾुख सुख में कमु ईंदो हुयुनि, उन्हनि मिली करे नानीअ जो अंतिम संस्कार कयो। संस्कार करे सभई मोटी आया। उन वक़्तु बि सभिनी थोरियूं थोरियूं सिसकियूं भरियूं, पोइ सभई चुप करे वेही रहिया। विधवा धीउ अंजू खूब रुनी। घर में हुन जो हिकु सहारो नानी ई हुई, उहा बि हाणे हली वई। अंजू बिल्कुलु अकेली थी वई हुई। अंजूअ खे आथत ॾींदे ॾींदे संजू नानीअ जूं सभु पुराणियूं ॻाल्हियूं यादि करणु लॻी। जॾहिं खां नानीअ हिन मोहल्ले में कमरो वरितो हुयो, सभई पाड़े वारा नानीअ खे अम्मा अम्मा करे सॾींदा हुया ऐं सार संभाल लहंदा हुया। कॾहिं नानीअ खे कुझु थी वञे त कोई दवा वठी अचे त कोई सेवा करणु अची वेंदो हुयो। अंजू बे पाड़े वारनि ऐं उन्हनि जे ॿारनि सां हिरी मिरी वई हुई। सभिनी ॿारनि खे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारींदी हुई। शैतान ॿारनि खे बि पंहिंजे प्यार सां मोहे उन्हनि खे सुधारे छॾींदी हुई। नानीअ जी उमिरि लॻभॻि 90 साल हुई, त बि हूअ ॾाढी सुहिणी

0: नज़र ईंदी हुई। उनखे अक्सर कमर जे सूर जी शिकायत रहंदी हुई। तब घर जी साफ़ सफ़ाई अहिड़ी रखंदी हुई कि घर पयो चमकंदो रहंदो हुयुसि। पंहिंजो नंढो वॾो कमु सभु पाण करण में विश्वास रखंदी हुई। नानीअ जी भॻवान में ॾाढी श्रद्धा ऐं पूॼा पाठ में ॾाढो विश्वास हुयुसि। जॾहिं बि ॿार पाण में विढ़ंदा हुया, नानी उन्हनि खे सुठी ॻाल्हियूं करे समझोतो कराईंदी हुई ऐं समझाईंदी हुई, झगड़ो करणु ख़राबु ॻाल्हि आहे, मिली जुली रहणु सुठी ॻाल्हि आहे। नानीअ जूं इहे ॻाल्हियूं ॿारनि खे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं हुयूं ऐं ॿार बि मञींदा हुयसि। हिकु ॾींहुं हिकु ॿारु कंहिंखे नवां कपिड़ा ॾिसी मशिरजी वियो ऐं चवण लॻो, मूंखे बि अहिड़ा ई कपिड़ा घुरिजनि। उन जी माउ ॿार खे मारण लॻी त नानी ॿार जो रोअण ॿुधी उते पहुती ऐं चयाईं, ॿार कंहिं शइ लाइ जिद न कंदा त उहे ॿार कहिड़ा, भला छा वॾा जिद कंदा। ॿारनि जो त इहो ई कमु आहे, मारण सां त ॿार अञा बिगड़ी वेंदा। उन्हनि खे प्यार सां ऐं मिठड़ी ॻाल्हियुनि ज़रिए सही रस्ते ते आणणु घुरिजे। वॾनि वातां ॿुधो हुयो कि औलाद न थियण सबबि नाने ॿी शादी कई हुई। पहिरीं ज़ाल बिना औलाद भॻवान ॾे हली वई ऐं ॿीअ ज़ाल नानीअ मां टे धीअर ई पैदा थियसि, कोई छोकिरो न। हिकु ॾींहुं अचानक नानीअ जो पेर बाथरूम में तिरकी वियो ऐं हूअ किरी पई। नानीअ खे ॾाढो सूर थी रहियो हुयो ऐं हूअ अंधाहूं करे रही हुई। सभई पाड़ेसरी अची गॾु थी विया। सभिनी खां पहिरियां त नानीअ खे मथे खणी सुम्हारियो वियो, पोइ कंहिं हेड चूनो लॻायो त को सेक करण लॻो त कोई दवा ॾेई रहियो हो, पर पोइ बि नानीअ जो सूर घटि कोन थी रहियो हो। सभिनी फ़ैसिलो कयो कि ॿियनि धीअरुनि खे बि घुरायो वञे ऐं नानीअ खे अस्पताल वठी वञिजे। नानीअ जूं धीअर ॿिए ॾींहुं आयूं। तेसिताईं नानीअ जी हालति ॾाढी ख़राब थी चुकी हुई, टंग सुजी पई हुयसि, शायदि हॾी टुटी पई हुयसि। जीअं तीअं चार माण्हुनि नानीअ खे चादर में विझी चइनि कुंडुनि खां पकिड़े चौथी मंजिल तां हेठि लाहे अस्पताल वठी विया। डॉक्टरनि जांच खां पोइ ॿुधायो कि टंग में फ्रेक्चर आहे, ऑपरेशन थींदो। नानीअ खे भर्ती करायो वियो। सभई जांचूं करण खां पोइ ऑपरेशन कयो वियो। नानीअ जी सुंदरता ऐं सफ़ाई ॾिसी सभई हैरत कंदा हुया। नर्सूं नानीअ खे ॾाढो प्यारु कंदियूं हुयूं ऐं वरी वरी अची मथे ते हथु घुमाए प्यार जो इज़हार कंदियूं हुयूं ऐं चवंदियूं हुयूं, नानी केतिरी सुहिणी आहे। गिल ते कारो मसो नानीअ जी सूंह अञा वधाए रहियो हो। नानीअ जो ऑपरेशन त सही थियो, पर कमर ॾे डॉक्टरनि ध्यानु ई न ॾिनो। नानीअ जी कमर ॾे ध्यानु न ॾियण सबबि नानी कॾहिं उथी न सघी। हिकु खट ते ई लेटी पई दाहूं कंदी हुई। उते ई खाइणु पीअणु सुम्हणु हलंदो रहियुसि। सेवा करे करे आख़िर सभई परेशान थी विया। सभिनी जी प्यारी नानी आख़िर पंहिंजा आख़िरी ॾींहं ॻणण लॻी। आख़िर अहिड़ी हालत में हूअ केतिरा ॾींहं जिंदा रही हा। आख़िर हिकु ॾींहुं नानीअ पंहिंजे जीवन जो आख़िरी साहु खयो ऐं सभिनी खे अकेलो छॾे हली वई। नानीअ जे मौत जो कंहिंखे वधीक ॾुखु न थियो, बल्कि संतोष मिलियो कि नानीअ जा ॾुख ऐं तकलीफ़ूं नानीअ साण ई हली वयूं। नानीअ जी मौत ते सभिनी पंहिंजा ॿ ॻोढ़ा ॻाड़े नानीअ जी अस्थियुनि जो तर्पण कयो। महिरबानी
1: दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत जी ॻाल्हि कंदासीं जिन पंहिंजी सोच, हिमत ऐं सुधारवादी वीचारनि सां समाज खे हिकु नई दिशा ॾिनी। हर साल 22 मई ते राजा राम मोहन राय जी जयंती जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे।

ही ॾींहुं महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जे जनम दिवस जे रूप में याद कयो वेंदो आहे। उहे भारतीय नवजागरण जे पिता जे नाले सां मशहूरु आहिनि। उहे हिकु अहिड़ा दूरंदेश इंसान हुआ जिन समाज में फैलियल घणनि ई बुराइयुनि जे ख़िलाफ़ पंहिंजी आवाज़ खई। हुननि सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास ऐं सामाजिक असमानता जे ख़िलाफ़ मज़बूत संघर्ष कयो। उन्हनि जाइफ़ाउनि जे अधिकारनि, शिक्षा ऐं सम्मान लाइ अहम कमु कयो आहे। उहे पंहिंजे दौर सां काफ़ी अॻियां जी सोच रखंदा हुआ। उन्हनि शिक्षा खे समाज जी तरक़ीअ जो सभिनी खां वॾो ज़रियो समुझो। अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान ऐं आधुनिक विचारधारा खे भारत में मज़बूत करण में उन्हनि जो योगदान

कयो। उन्हनि जाइफ़ाउनि जे अधिकारनि, शिक्षा ऐं सम्मान लाइ अहम कमु कयो आहे। उहे पंहिंजे दौर सां काफ़ी अॻियां जी सोच रखंदा हुआ। उन्हनि शिक्षा खे समाज जी तरक़ीअ जो सभिनी खां वॾो ज़रियो सम्झो। अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान ऐं आधुनिक वीचारधारा खे भारत में मजबूत करण में उन्हनि जो योगदान बेहद अहम रहियो आहे। उहे सिर्फ़ समाज सुधारक न हुआ, पर इंसानियत, समानता ऐं तरक़ीअ जा पैगंबर हुआ। उन्हनि ब्रह्मो समाज जी स्थापना कई, जंहिं जो मक़सदु समाज में धार्मिक सुधार, एकता ऐं इंसानी बराबरीअ खे वधाइणु हुओ। अॼु जे दौर में बि उन्हनि जा वीचार असां लाइ ओतिरा ई ज़रूरी आहिनि, जॾहिं असां समाज में शिक्षा, जाइफ़ाउनि जी सुरक्षा, बराबरी ऐं इंसानियत जी ॻाल्हि करियूं था। उते इन्हनि जी सोच असांखे राह ॾेखारींदी आहे। समाज मां हर क़िस्म जी बुराई, अंधविश्वास ऐं भेदभाव खे ख़तमु करण जो योगदान असांखे बि ॾियणु घुरिजे। दोस्त, जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुयमि त छुटियूं हली रहियूं आहिनि ऐं मिजमाननि जी अचवञु त लॻी पई हूंदी आहे। कंहिंजे घर धीअर पियूं अचनि त कंहिंजूं नूअर पियूं वञनि। त अचो इन्हीअ ते ई ॿुधूं था महेश चंदर जी आवाज़ में ॻायल ही सुहिणो गीतु।

0: खाई रुखी सुखी मां रोटी घर जे अंदर घुमंद से दीन गुजारे सांजी धारे चादर ताणे सुमंद से
1: साईं चादर ताणे सुमंद से वावा चादर ताणे सुमंद से
0: मुड़ के चयो मिजमान मथा जिंद जान कभी कुर्बान।

0: ॾिसी नओं मिज़मानु कयाऊं उन जो आदर भाव पहिरीं राति ॾिनऊं हुनखे खासो बोड़ पुलाउ
1: साईं खासो बोड़ पुलाउ।

0: माल मली दा खाई साई घिटिया घिटिया में घुमंद से घुमी समूरो शहर रात जो सेज पलंग ते सुमंद से
1: साई सेज पलंग ते सुमंद से वाह वाह सेज पलंग ते सुमंद से
0: अड़ा बोल।

0: रही पियो मिजमान हुनन भी भायो पंहिंजो भाग खेस ॾिनाऊं खाधी रोटी सूरण जो ई साग
1: साईं सूरण जो ई साग हवा सूरण

0: सोचण वेठा सब घर वारा हीअ त गरी थी ॻाल्हि खेसि ॾिनऊं अणबो ढोढो मिर्चनि वारी दाल
1: मिर्चनि वारी दाल।

0: रहा दुसे
1: तूरण सांगद चाहे चखे मां घाटा जंगल घुमंद से ठिके खीर सा खिचणी खाई संदल ते सुमंद से
0: साई संदल ते सुमंद से वाह वाह संदल ते

0: चवंदा आहिनि चंडे सां बस पुजंदो आहे चंडो जो खई जीअं हथ में सौटी
1: मुड़ुसि खयो तीअं डंडो साईं मुड़ुसि खयो तीअं डंडो वाह वाह मुड़ुसि खयो तीअं डंडो मस मस तिन खे पाण छॾाइण जो आयो ही ॾांहुं
0: भॻो वठी मिज़मान।

दोस्तों हाणे वक्त थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नए कार्यक्रम सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: कवि श्री राग तेलंग।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
4: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख है मयंक भार्गव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बैतूल जिले में जनगणना

0: 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत 2,802 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से सोमवार की शाम तक 2,400 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सिंक किया जा चुका है। जिले के सभी 21 चार्जों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साह के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा मकान सूचीकरण और ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर ही पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट लेआउट मैप तैयार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में बैतूल जिले में इस बार कुल 4,56,050 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरीफ की फसलों का रकबा तय किया गया है, जिसके विपरीत पिछले साल 4,55,510 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। इस साल कुछ फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि कुछ फसलों के रकबे में कमी आई है। बैतूल जिले के किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक डॉक्टर आनंद बडोनिया ने बताया कि इस बार धान को 44,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। पिछले साल ये 43,872 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं मक्का 3,01,500 हेक्टेयर में बोई जाएगी, जो कि पिछले साल 3,93,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं कोदो कुटकी का रकबा इस बार 1,000 हेक्टेयर रहेगा। बीते साल इसका रकबा 639 हेक्टेयर था। उड़द, मूंग और अरहर का रकबा भी इस साल बढ़ेगा। बीते साल इन दलहनी फसलों का रकबा 6,971 हेक्टेयर था, जबकि इस बार 7,750 हेक्टेयर में ये फसलें बोई जाएंगी। वहीं तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इस साल बैतूल जिले के 1,718 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। न्यूजीलैंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदा पहुंचकर नांदा हनी कलेक्शन एवं प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने शहद उत्पादन से जुड़े स्थानीय समूहों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में हनी कलेक्शन सेंटर स्थापित होने के बाद शहद के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले शहद का मूल्य लगभग 55 रुपए प्रति किलो था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बैतूल जिले में इस साल गेहूं खरीदी की रफ्तार पूरी तेजी पकड़ चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी के टेकाम ने जानकारी दी है कि अभी तक जिले में 40,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। अभी भी हजारों किसान अपने गेहूं की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल की खरीदी का आंकड़ा देखकर जिले को इस साल गेहूं खरीदी के लिए कम लक्ष्य दिया गया था। वहीं इधर बंपर उत्पादन को देखते हुए जिले से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 मीट्रिक टन किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्षीरधारा ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 37 गांवों का चयन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि पेयजल समस्या से प्रभावित गांवों में बोरिंग मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार इस मौके पर व्यक्त किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। यह प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में असमिया भाषा का गीत, रचना सतीश दास की।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें

0: अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के।
0: सुमीलो,
1: सुमीलो।
0: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माटी ते जीवन, ए माटी ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माटी ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,
1: हाँ।
0: ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, ये ख और ह के बीच में आकाखार भी नहीं आकाहार भी नहीं, आकाहार आकाहार लिखो। दूर आकाहार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर। ख नहीं बोलना, ख खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में। तो खागोर तोलीर मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे, लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा,
1: आहा, आहा।
0: फिर मातीर बुकुत,
1: मातीर बुकुत।
0: हाँ, मातीर बुकुत मोनोर, मालोती बूटोलो,
1: बूटोलो।
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर,
1: मोनोर
0: कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे।
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे।
0: पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना।
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार,
1: हुकुमार।
0: थापो,
1: थापो।
0: नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा।
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना। हुंदौर,
1: हुंदौर।
0: खनी ख, खुदीनौर,
1: खुदीनौर।
0: नौतून,
1: नौतून।
0: दृष्टि,
1: दृष्टि।
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके। दृष्टि,
1: दृष्टि,
0: दृष्टि,
1: दृष्टि।
0: शनि सही बोलना, दृष्टि,
1: दृष्टि।
0: कौनो,
1: कौनो।
0: ना हुआ,
1: ना हुआ।
0: आगे ना।
1: जी, जी।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

0: 있어 그러니까.
1: अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना एक दो तीन चार

0: सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में अभी आप सुन रहे थे असमिया भाषा का गीत, रचना सतीश दास की थी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
3: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। बादशाह हो फिल्म का ये गीत है, नुसरत फतेह अली खां और राहत फतेह अली खान ने इसे गाया है। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ, तनिष बागची ने धुन बनाई।

सोना महापात्रा और रविंद्र उपाध्याय का गाया फिल्म तलाश से ये गीत था। जावेद अख्तर का लिखा हुआ राम संपत की धुन थी। पैडमैन फिल्म का यह गीत अरिजीत सिंह ने गाया है। कौसर मुनीर का लिखा है, अमित त्रिवेदी ने धुन बनाई।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत था। यशिता शर्मा और मनीष कुमार टिपू ने इसे गाया था। दिल धड़कने दो फिल्म का यह गीत था। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा का गाया फिल्म दिलवाले का यह गीत है। धुन बनाई प्रीतम ने, संगीत प्रीतम का है और बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: दम लगा के हईशा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। विदिशा जिले में अब तक 59,323 किसानों से 5,09,000 टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं जबलपुर जिले में 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे से धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आप अपनी फरमाइश हमें बताते हैं टेलीफोन नंबर 2660902 पर। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755।
2: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
2: जी मैडम, मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी सोनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं।

0: तो क्या हो रहा था इस समय?
1: बस गर्मी बहुत ज्यादा है मैडम, बैठे हैं छाया में घर में।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है, गर्मी सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि अब इस गर्मी के थोड़े थोड़े नुकसान होना भी शुरू हो रहे हैं,
1: जी मैडम,
0: है ना? तो
1: अभी तो बस
0: इसलिए
1: घर में बैठकर पंखे
0: जी
1: में नींबू पुदीना का शरबत पीकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। बताइएगा
1: अच्छा,
0: आज के।
1: अभी
0: हाँ
1: हाल ही में आकाशवाणी के
0: जी
1: गौरवशाली 90 वर्ष से पूरे होने पर
0: जी
1: आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: 8 जून 2026 को ये समय पूर्ण होगा। 90 वर्ष का उत्सव भी लगातार आकाशवाणी में अलग अलग ढंग से चल रहा है। कहीं वॉकेथॉन हो रहा है, कहीं संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी कुछ पुराने लोगों से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: मैडम, जब टेलीविजन
0: जी
1: मोबाइल जैसी सुविधाएं लोगों से दूर थी,
0: जी
1: तब रेडियो एक माध्यम था लोगों के बीच में
0: बिल्कुल
1: देश
0: सही
1: दुनिया
0: बात
1: के
0: है
1: समाचार पहुंचाना,
0: जी।
1: बच्चों की कहानियां, लोक संगीत, गाना सुनाना, इसी से संबंधित जानकारी हम सभी के लिए रेडियो ने कुछ ना कुछ दिया है। धन्यवाद
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी भी धन्यवाद देता है अपने श्रोताओं को, आभार व्यक्त करता है सभी सुनने वालों का कि आप लगातार अपने पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहे, यानी आकाशवाणी से जुड़े रहे, और आकाशवाणी आप तक सूचनाएं, मनोरंजन और समाचार पहुंचाती रहे। बताइए आज के
1: फिल्म
0: कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: का नाम है मैडम, जिस देश में गंगा बहती है, और गाने के बोल हैं, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख
0: क्या बात है,
1: लो क्या सर कर दिया आज की शाम ने।

हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, और आप जिस चीज से भी मिले कुछ इस तरह से मिले कि हर मिलने वाले को आप

0: की याद आती रहे।
1: क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात, इतनी अच्छी दुआ देने वाला कौन कॉलर हमसे जुड़ा है हम जानना चाहेंगे।
0: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी मंसूरी साहब कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा मैडम, और इत्तेफाक की इतनी बात हो रही है मैडम कि मैं 10-15 दिन बाद लगाता हूँ, और जब भी लगाता हूँ तो आपसे ही मुलाकात होती है।
1: जी जी ये बात हम भी कहना चाह रहे थे लेकिन आपने पहले कह दी, तो इसे सिवाय संयोग के और कुछ नहीं कह सकते हैं। इस गर्मी में क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: मैडम गर्मी का तो ये मैं कहूंगा कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं इससे प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा रखती हूँ,
1: क्या
0: जैसे
1: प्रोटेक्शन
0: कि
1: रखते हैं?
0: मैं धूप से तो बहुत ज्यादा बचता हूँ कि धूप में कहीं पे निकलता नहीं हूँ,
1: हाँ
0: और कभी निकलना होता भी है तो सिर पे
1: जी
0: दुपट्टा या सिर पे अपने टोपी रखता हूँ या रुमाल रखता हूँ, और घर में ही अधिकतर रहता हूँ। और जब जैसे ड्यूटी पे भी जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग बाहर दिन में नहीं निकलते हैं, घर पे वहाँ मतलब गोडाउन के अंदर ही रहते हैं,
1: जी
0: और घर में जो मतलब कि अपना जो तरल पदार्थ रहता है पानी की मात्रा, इसमें गर्मी में कम से कम 1 लीटर ज्यादा बढ़ा देता हूँ, जैसे आम दिनों में पीता हूँ ना तो उसे गर्मी में 1 लीटर और ज्यादा कर देता हूँ मैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और इसका नापतौल यदि ना भी रखा जाए तो भी जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पानी पीजिए, और ऐसा लगे कि पानी पिए हुए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो प्यास ना भी लगे तो भी जरूर पीजिए।
0: जी जी पीता रहता हूँ मैडम, मेरी
1: बिल्कुल
0: मेरी सिस्टर मेरे को बोलती है कि देखो प्यास नहीं लगती, फिर भी पीता है तो पानी, मैंने स्वस्थ रहना है और डिहाइड्रेशन अगर नहीं होना शरीर में तो इसको
1: जी
0: पानी अपने को पीना ही पड़ेगा, जरूरी
1: बिल्कुल
0: नहीं कि प्यास लगे तब भी।
1: जी। साथ में एक बात का ध्यान हम उम्मीद करते हैं कि सभी रखते होंगे, थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान बहुत जरूरी होता है
0: हाँ
1: क्योंकि इस
0: साफ सफाई
1: समय
0: का बिल्कुल
1: पसीना
0: ध्यान रखता
1: बहुत
0: हूँ मैडम,
1: आता
0: और
1: है।
0: हमेशा बॉइल्ड वाटर पीते हैं हम लोग,
1: जी सिर्फ पानी की ही साफ सफाई की बात नहीं है मंसूरी साहब,
0: प्यास
1: पसीना
0: लगती
1: जैसे
0: है।
1: बहुत आता है वही हाथ हमारे आंखों में लग गए, वही हाथ मुंह में लग गए, तो इससे कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, तरल पदार्थ और पानी लेते रहें,
0: जी
1: और
0: जी साफ
1: साथ ही
0: सफाई का तो मैं
1: बताएं कि
0: बिल्कुल ध्यान
1: कौन सा
0: रखूंगा।
1: गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में।
0: फिल्म है घर संसार,
1: और
0: जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म है।
1: जी गीत के बोल
0: चोट लगी है कहाँ यहाँ बता न सकूँ मैं कहाँ।
1: जी

0: हेलो
1: हेलो। हाँ नमस्कार,
0: जी नमस्कार।
1: हाँ मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास से।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी, कार्यक्रम
0: क्या चल रहा था इस
1: सुन रहा
0: समय?
1: है।
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ रेडियो चल रहा है अभी।
0: जी, तो अभी सुबह से कौन कौन से कार्यक्रम सुने?
1: अभी तो जैसे सुबह था अपने नमस्कार भोपाल, और बाकी ये जो आपका आता है सुरमई सवेरा है, और कुछ इंदौर के भी सुनता है। जैसे 6 बजे से ही चालू रहता है, और फिर बाद में जैसे मैं दुकान आ जाता हूँ तो फिर यहाँ पर सुनता हूँ। जैसे
0: जी,
1: यहाँ
0: बताइए
1: पर
0: कौन सा
1: थोड़ा
0: गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे?
1: आज मेरा गीत है दीदी, ये हम दोनों मिलके कागज पर दिल पे, ये मुकेश जी की आवाज में है।

0: हेलो मैम, नमस्कार
1: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: जी। मैम सागर से बोल रहा, पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: जी तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, मौसम बहुत गर्म है
1: जी, मौसम तो गर्मी का है तो गर्म तो होना ही है।
0: जी, ऊपर वैसी बरसात भी होगी अच्छी।
1: हाँ, उम्मीद की जा सकती है, हर बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता है कि होगा
0: जी
1: ही।
0: वो एक नक्षत्र में अच्छा बारिश बता रहे हैं, एक में थोड़ा कम।
1: बताने और होने के बीच का जो फर्क है ना, उसी फर्क को इन दिनों हम सब महसूस कर रहे हैं कि अपन
0: गर्मी से
1: कहते जरूर हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। जिस
0: जी
1: तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम चक्र गड़बड़ाया हुआ है, उसी का
0: जी
1: नतीजा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हम लोग सब भोग रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये है गाना है मेहंदी वाली रात आ गई, आदमी खिलौना है।

0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरा नर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी कैसे हैं वर्मा जी?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: बस हम तो आपकी फरमाइश सुनवाने के लिए बैठे हैं, तो बताइए कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी?
1: जी मैडम, वहाँ भोपाल में मौसम कैसा हो रहा है मैडम? गर्मी पड़ने लगी हुई है
0: गर्मी
1: वहाँ भी अभी
0: तो
1: यहाँ।
0: बहुत तेज गर्मी है, तीखी गर्मी है, सुबह से ही गर्मी हो जाती है, सूरज निकला नहीं कि गर्मी की तीव्रता महसूस होती है। तो अभी
1: जी
0: पिछले कुछ एक दिनों से तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ जी, हाँ इधर भी ऐसा हो रहा है मैडम मौसम, और
0: जी
1: बारिश तो आती नहीं, थोड़ी बारिश आ जाती है क्योंकि थोड़ी ठंड हो जाए, पर यह मौसम ऐसा हो गया कि बारिश तो आती नहीं, अंदर आ जाता है बहुत तेज। तो
0: हाँ, कुछ चीज़ें समय और मौसम के हिसाब से ही होती हैं, और वो किस रूप में होंगी ये हम बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम,
0: जी
1: तो फिल्म का नाम है मैडम कहीं प्यार ना हो जाए,
0: जी गीत के बोल।
1: और उसमें गाना का बोला दिन ताना बन्नो की चूड़ी लाख की बन्नो का गजरा लाख का, ऐसा कुछ
0: ये
1: गाना है।
0: गीत तो आप एक बार और भी सुन चुके हैं
1: नहीं मैडम, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इस गाने को मैं।
0: ऐसा?
1: हाँ जी, हाँ जी, पहली बार ही फरमाइश कर रहा हूँ मैडम ये गाना।
0: हमें तो कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये गीत हम सुनवा चुके हैं। यही गुजारिश की थोड़ा सा अपने फरमाइश के गानों की लिस्ट को बना के रखें, और उसमें से जो गाना सुन लेते हैं उसको या तो काट दें या टिक लगा दें उस पे, तो
1: हाँ जी,
0: गानों में भी रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी बनी रहेगी,
1: हाँ जी मैडम, नहीं वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है क्योंकि वो गाने नए नए गाने आए और न तो अच्छा लगता है ऊपर, कई
0: जी?
1: कई चरणों पे तो ये होता है कि वही गाने बजाते रहते, पर आप जैसे आरजे और आरजे से आकाशवाणी भोपाल है तो अलग अलग नए नए गाने या कोई भी
0: जी
1: गाना हो जो कम बजा हो तो वो प्रयास करते हैं मैडम
0: जी
1: बजाने का।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमारा कहना ये होता है कि एक अच्छी लंबी लिस्ट बना लें अपनी पसंद के गीतों की। और आप लोग तो बहुत नियमित तौर पर आकाशवाणी सुनते हैं, बहुत सारे स्टेशन सुनते हैं, तो सभी जगह से कई सारे गाने बजते हैं, उन गानों में से जो गाना पसंद आया उसे अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए, और जो गाना सुन चुके हैं उस गाने को क्रॉस कर दीजिए या काट दीजिए या उसमें टिक लगा दीजिए ताकि वो दोबारा ना करें। तो उससे
1: हाँ जी,
0: कार्यक्रम की विविधता और आपकी फरमाइश दोनों का बैलेंस बना रहेगा।
1: जी मैडम बिल्कुल बात,
0: बहुत धन्यवाद, हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम।
1: मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्कार,
1: फोन करेगी सुने जी,
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। कौन बात कर रहे हैं?
1: अम्बेडकर चौक टेगरवाड खुरई से राम सखी परमानंद।
0: जी परमानंद जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अरे अभी थोड़े काम से आए थे पोस्ट ऑफिस तक, तो थोड़ा टाइम था
0: अच्छा अच्छा
1: विशाल कराने।
0: हाँ,
1: चलो उन्हीं के बहाने होने की बात ही कर लें
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी। अभी शादी का सीजन चल रहा है तो विवाह फिल्म का दो अनजाने अजनबी वो सुना दीजिए, कोई भी सुना दे विवाह फिल्म का आप।

0: हेलो
1: आलमी दीदी, सादर नमस्कार।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: जी, हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आलमी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ, आकाशवाणी भोपाल से।
0: ब्रज रेडियो श्रोता संघ के हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, ये बताएं कि मथुरा के क्या हाल हैं, कितनी गर्मी
1: जी,
0: पड़
1: मथुरा
0: रही
1: में
0: है।
1: इस वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है, प्रचंड गर्मी के त्रस्त हैं।
0: जी
1: चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, लू के
0: जी
1: प्रकोप में है। तापमान का सवाल है तो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और न्यूनतम मिनिमम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रात में।
0: तो बताइए कि इस गर्मी के मौसम में कौन सा गीत आप तक पहुंचाया जाए कि कुछ सुकून मिले मन को।
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यशोदास साहब ने गीत को गाया है,
0: हाँ
1: हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा
0: क्या
1: है।
0: बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, पहुंच रहा है आप।
1: जी।

0: फोन कर रही हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम,
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अमृता बोल रही हूँ रीवा से। ठीक
0: कैसी हैं अमृता जी आप?
1: हूँ मैम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था इस समय?
1: इसलिए मैम आज बस सावित्री पूजा थी।
0: तो हो गई पूजन?
1: जी जी
0: व्रत रहेगा आज या पूजा के बाद?

0: भोजन हो जाता है।
1: नहीं मैम, मैं हमारे यहाँ अमावस्या का व्रत नहीं करते, लेकिन
0: अच्छा,
1: जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी भी नहीं, मतलब जल कुछ भी नहीं
0: नहीं
1: लेते हैं।
0: लेते हैं बिल्कुल। और इस पूजा में क्या कुछ खास बनता है आपकी तरफ?
1: जी वो गुड़ का वो बनती है पूड़ी वगैरह,
0: अच्छा
1: बट की जो जैसे फल रहते हैं
0: हाँ,
1: उस टाइप के गोल गोल बनाने
0: छोटे
1: पड़ते
0: छोटे,
1: हैं
0: क्या कहते हैं
1: गोल,
0: आप लोग उसको?
1: उसको बरगद टाइप के
0: बरगदा,
1: गोल।
0: वही नाम जानना चाह रहे थे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से नाम थोड़े बदल जाते हैं, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमने पूछा कि वहाँ क्या बनता है और क्या कहलाता है, ये जानना चाह रहे थे। कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?

0: कोशों को जमानत के रूप में रखता हूँ, और तुम जाकर उस भासुर को बुला लाओ। हम दोनों में से जो शक्तिशाली होगा वही इस वन का राजा होगा, और वही इन खरगोशों को भी खाएगा। उसी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे देर होने का यही कारण है। अब आपकी क्या आज्ञा है स्वामी?
1: यदि तुम्हारा कहना सही है तो उस चोर और दुष्ट सिंह को मुझे शीघ्र दिखाओ, जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं।
0: धन्य है आप महाराज, धन्य है, आप तो वीर क्षत्रिय हैं, परंतु आपका ये शत्रु दुर्ग का आश्रित है। दुर्ग में रहने वाला शत्रु अजेय होता है, आप तो दुर्गहीन हैं। दुर्गहीन राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में आ जाता है।
1: कोई बात नहीं, फिर भी मुझे उस सिंह को दिखाओ।
0: स्वामी का कहना यथार्थ है, फिर भी मैंने देखा है वह बलवान है, उसकी शक्ति की जानकारी लिए बिना जाना उचित नहीं है।
1: तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन है? वो दुर्ग में हो चाहे शक्तिशाली हो, मुझे उसे दिखाओ।
0: यदि ऐसी बात है तो स्वामी चले।
1: हाँ।
0: आइए। इधर से महाराज। हाँ बस आ गया। अरे यही तो था, गया कहाँ? महाराज आपके तेज को कौन सह सकता है? दूर से ही आपको आते हुए देखकर वे चोर सिंह अपने दुर्ग में घुस गया होगा। आइए अभी दिखाता हूँ।
1: कहाँ है उसका दुर्ग, दिखा।

उस खरगोश ने रास्ते में जो कुआं देखा था उसी को दूसरे सिंह का दुर्ग बता दिया। फिर वो मूर्ख बहासुर कूप के अंदर झांक कर गर्जना करने लगा। गर्जना की उस कुएं में दुगनी प्रतिध्वनि हुई, साथ ही अपनी छाया को भी देखा। उसी प्रतिबिंब को शत्रु समझकर उस पर कूद पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। और फिर खरगोश के सकुशल लौटने पर सारे वन में उत्सव का माहौल हो गया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। आगे दमनक और करकट ने क्या किया ये सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता 29 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर नरेंद्र मोदी ऐप या माई गाव ओपन फोरम के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की स्वीडन यात्रा आज से शुरू हो रही है। दौरान वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बी के एक कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 से धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली में शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। खाना खजाना में गर्मी स्पेशल बेल और फालसी का शरबत बनाना जानेंगे और साथ ही उनके फायदे और सुनेंगे मधुर संगीत। बहनों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें दूर संचार का विशेष स्थान है। दूर संचार का अर्थ है दूर बैठे लोगों तक सूचना, संदेश, चित्र और ध्वनि को पहुंचाने की व्यवस्था। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो इसके प्रमुख माध्यम हैं। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। यह दिन हमें बताता है कि संचार के आधुनिक साधनों ने दुनिया को कितना छोटा और जीवन को कितना सरल बना दिया है। पहले के समय में किसी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। लोग पत्रों का सहारा लेते थे और उत्तर आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बात की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग ने तो दूरियों को लगभग समाप्त कर दिया है। परिवार और मित्र एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। आज विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा और शैक्षिक वीडियो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुँचने से

शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। सखियों, स्वास्थ्य सेवाओं में भी दूरसंचार का बड़ा योगदान है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं में तुरंत संपर्क होने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भी दूरसंचार ने जीवन को आसान बना दिया है। ऑनलाइन भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग ने समय और मेहनत दोनों की बचत की है। आज लोग घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दूरसंचार के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। इंटरनेट का सही उपयोग करना, साइबर अपराधों से बचना और बच्चों को सीमित एवं सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। बहनों, दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। हम तकनीक का उपयोग समाज और मानवता के विकास के लिए करें। सही दिशा में उपयोग किया गया संचार देश की प्रगति और लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है। बहनों, अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम, जिम्मेदारियों और सुविधाओं के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूलते जा रहे हैं। यही लापरवाही आगे चलकर अनेक बीमारियों का कारण बनती है। इन्हीं बीमारियों में एक गंभीर समस्या है रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों का अभाव इस बीमारी के मुख्य कारण हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हृदय रोग, किडनी की समस्या और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी में तेज धूप, अत्यधिक तापमान और पानी की कमी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। ऐसे समय में रक्तचाप बढ़ने या घटने की समस्या भी सामने आती है। इसलिए इस मौसम में स्वयं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सखियों, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव अपनाने चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर योग और व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, अधिक नमक और तले हुए भोजन से बचना तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ ही मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए परिवार के साथ समय बिताना और पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है। थोड़ा समय खुद को दीजिए, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए निकालें तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्तचाप की समय समय पर जांच भी आवश्यक है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन का सही आनंद ले पाएंगे।

सखियों, अब बात करते हैं उस खास विषय पर जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। यह अपील उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में कही। हम

एक एक करके सबके विषय में बात करते हैं और एक विशेष बात जो हम महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। सखियों, पहली बात, विदेशी यात्राएं कम करें, क्योंकि विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए भारत में पर्यटन को बढ़ावा दें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और कम ईंधन उपयोग की अपील की गई। एक बात ऐसी जो सीधे हम मातृशक्ति से जुड़ी है, वो है सोना। सोने के गहने हमारी पहली पसंद होते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक वर्ष तक सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। विदेशी उत्पादों की बजाय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करना है, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और स्थानीय उद्योग मजबूत हो। और साथ ही खाने के तेल का उपयोग कम करें, प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें, यानी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की गई। बहनों, इन बातों का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के कारण तेल और आयात महंगे हो रहे हैं। ऐसे समय में यदि देशवासी थोड़ी सावधानी बरतें, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रह सकती है। तो हम सब देशवासियों को जो बातें हमारे हित में कही गई हैं, उन पर अमल करना चाहिए। सखियों, प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत को जानने, समझने और सहेजने की प्रेरणा देता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे हमारे अतीत की जीवंत कहानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश के संग्रहालयों में हजारों वर्षों पुरानी मूर्तियाँ, हस्तलिपियाँ, हथियार, सिक्के, चित्रकला, लोककला और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक अनमोल वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। बहनों, आज आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त है, जिसके कारण इतिहास और विरासत के प्रति रुचि कम होती दिखाई देती है। ऐसे समय में संग्रहालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संघर्षों से परिचित कराते हैं। जब हम किसी ऐतिहासिक वस्तु को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है। हमारी धरोहरें केवल पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों की सोच, कला, मेहनत और जीवन शैली का प्रतीक हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करे और उनके संरक्षण में योगदान दे।

सखियो अब बात करते हैं गर्मी वाले मौसम की। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि वह सहन नहीं हो पा रही। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे शरीर पर उसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। अधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी और लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में विशेष सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम कुछ सरल उपाय अपनाएं तो गर्मी की लपट से आसानी से बच सकते हैं। गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है, इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इससे बचने के लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, साथ ही छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू पानी का भी पर्याप्त सेवन करना चाहिए। ये पेय शरीर को ठंडक देने के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जब आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तब धूप सबसे अधिक तेज होती है। इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए और बाहर जाना है तो चेहरे को सूती कपड़े से ढकें, सिर पर टोपी या गमछे का उपयोग करें, आंखों पर धूप का चश्मा लगाएं, धूप में अधिक देर तक ना रहें। सखियों, गर्मी में शरीर को हवा मिलती रहनी चाहिए, इसलिए ढीले, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनना

सबसे अच्छा माना जाता है। इनसे पसीना जल्दी सूखता है, त्वचा को आराम मिलता है। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी सोखते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। गर्मी में भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। ज्यादा मसालेदार, तला भुना और भारी भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इस मौसम में आने वाले तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं, उन्हें धूप में अधिक देर तक ना रहने दें और समय समय पर पानी या तरल पदार्थ देती रहें। यदि किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो हो सकता है उसे लू लग गई हो। यदि ऐसा महसूस हो तो तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर उसको पानी पिलाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहनों, गर्मी का मौसम कठिन अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर इससे सुरक्षित रहा जा सकता है। बहनों, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। आज हम बना रहे हैं गर्मियों का अमृत, बेल और फालसे का शरबत। तो पहले नोट कीजिए बेल का शरबत बनाने में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए एक पका हुआ बेल, 4-5 गिलास ठंडा पानी, स्वाद अनुसार चीनी, थोड़ा काला नमक और साथ ही चाहिए भुना जीरा पाउडर। सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका गूदा निकाल लें। गूदे को पानी में डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल लें। अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि रेशे और बीज अलग हो जाएं। अब इसमें चीनी मिला लें। स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक, भुना जीरा पाउडर डाल लें और ऊपर से थोड़े बर्फ के टुकड़े भी डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार है। इस शरबत को आप बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को दे सकती हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है, थकान और कमजोरी दूर कर शरीर को ताजगी प्रदान करता है। सखियों, ये तो हुआ बेल का शरबत। अब जानते हैं फालसे का शरबत। बहनों, फालसा छोटे आकार का बैंगनी रंग का फल होता है, जिसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसका शरबत बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। फालसे का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप फालसे, 3-4 गिलास ठंडा पानी, काला नमक और थोड़ी सी चीनी और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आप फालसों को एक साफ पानी से धो लें और अब अलग से पानी लेकर उसमें फालसों को डाल दें और हाथ से अच्छी तरह से उनको मसल लें और अब इस मिश्रण को छन्नी से छान लें। अब इसमें चीनी, काला नमक और पुदीना मिला लें और बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। फालसे का शरबत शरीर को तुरंत ठंडक देता है। यह विटामिन से भरपूर होता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे हृदय के लिए फायदेमंद होता है और साथ ही रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। सखियों, इस गर्मी के मौसम में आप इन्हें जरूर बनाइए, खुद भी पीजिए और परिवार को भी पिलाइए। और देखिए सखियों, बातें करते करते समय निकल गया, पता ही नहीं चला। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे रामाधीन आर्या के गाए लोकगीत।
2: केतन की गोदी

रामाधीन आर्य के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:45 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नंद कुमार जैन तापसी नागराज और श्रुति वर्मा के गाए गीत। पहले सुनते हैं नंद कुमार जैन का गाया गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367। आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 2 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत सनी फिल्म से, आवाज आशा भोंसले की, आनंद बख्शी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

0: श्रुति वर्मा के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी की यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टसन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ है। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन में शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। इससे पहले कल शाम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मांडू के संत महामंडलेश्वर निसर्गदास जी महाराज भोजशाला पहुंचे और पूजा अर्चना की। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के लूनी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। जबलपुर जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। वहीं गेहूं उपार्जन कार्य में विदिशा जिला में 59,000 से अधिक किसानों से खरीदी हुई। इसके लिए जिले में कुल 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें विदिशा अनुविभाग में 51, ग्यारसपुर में 16, गंज बासौदा में 23, कुरवाई में 19, नटेरन में 31, सिरौंज में 20 तथा लटेरी में 14 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के भी अन्य जिलों में भी खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज

0: आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में से 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। ये पहल जनगणना अभियान के डिजिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में जौनपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होने के चलते इटारसी से गुजरने वाली 12 ट्रेनें डायवर्ट की गईं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर कोई बस चलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले में कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
4: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
5: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
4: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे

0: क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाज़ों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों

0: के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में

0: तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक विचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज के आधुनिक युग में फोन मोबाइल और इंटरनेट लोगों की आवश्यकता बन गए हैं। इन सब के बिना तो आज जीवन की कल्पना करना ही कठिन है। आज ये इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। आज यानी 17 मई को हम सभी विश्व दूरसंचार दिवस मना रहे हैं। दूरसंचार की बाल साथियों सबसे बड़ी उपलब्धि थी टेलीफोन का आविष्कार होना जिसके जरिए आप कहीं भी रहकर अपनों से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही 60 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत के साथ ही लोगों का जीवन और ज्यादा आसान हो गया। इसकी सबसे अधिक सफलता दिखाई दी कोरोना काल में क्योंकि इसके माध्यम से ही लोगों ने अपने रोजगार को जारी रखा। लोगों ने रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त किए चाहे वो शॉपिंग सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर। बल में तो इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज बैंकिंग ई शॉपिंग आदि के लिए अब अहम बन चुका है। ईमेल चैटिंग वीडियो और वॉइस चैटिंग आदि से हजारों किलोमीटर की दूरियां सिमट कर अब चंद सेकंड के फासले में बदल गई हैं। बाल साथियों विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई वर्ष 1865 में शुरू हुई थी लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। तभी से पूरे विश्व में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2005 में यूनाइटेड नेशन महासभा में इसे सूचना दिवस के तौर पर घोषित किया गया था। बाल मित्रों विश्व दूरसंचार दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। संचार की इस तकनीक से आज घर में बैठे लोग अपनों से जुड़े हैं ये सर्वश्रेष्ठ बात है। बाल मित्रों संचार के बदलते माध्यम में आज डिजिटल कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका रही है। स्कूली शिक्षा से लेकर दूर बैठे विदेशों में परिजन वर्क फ्रॉम होम सहित अन्य कार्य सिर्फ घर बैठकर कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की हर

भी मदद कर रहे हैं। लोगों का उपचार भी ऑनलाइन किया जा रहा है। बलमित्रों, ये दूरसंचार की ही क्रांति है जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की गिनती अब विश्व के कुछ ऐसे देशों में होती है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: दाना।
1: बाल साथियों, अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। बाल मित्रों, सदियों से धरती पर सबसे मेहनती जीवों में से एक मधुमक्खियां लोगों, पौधों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती रही हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाकर मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता न केवल प्रचुर मात्रा में फल, मेवे और बीज पैदा करते हैं, बल्कि अधिक विविधता और बेहतर गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान मिलता है। परागणकर्ताओं के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बल में तो इस दिवस को मनाने के लिए 20 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जॉनसा का जन्म वर्ष 1734 में हुआ था। जॉनसा स्लोवेनिया मधुमक्खी पालकों के परिवार में से थे, जहां ये एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जिसकी परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहली बार ये दिवस 20 मई वर्ष 2018 को मनाया गया था। बल में तो इस दिवस को

0: बनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा के लिए उपायों को मजबूत करना है जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने और विकासशील देशों में भूख को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम सभी परागणकों पर निर्भर हैं और इसीलिए उनकी गिरावट की निगरानी करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना महत्वपूर्ण है। बाल मित्रों, मधुमक्खी पालन दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाल मित्रों, आज मधुमक्खियां परागणकर्ता और कई अन्य कीटों की संख्या में कमी आ रही है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है, चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हों या चिंतित नागरिक हों। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं बाल मन से क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। उनसे बात कर रहे हैं राजेंद्र अहिरवार।
1: नमस्कार बाल मित्रों, बाल मन से क्रम में एक और नन्हे मेहमान हमारे बीच हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका?
2: कृष्ण नामदेव।
1: कृष्ण, कहाँ से आए हैं आप?
2: ग्राम पोस्ट देरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।
1: ग्राम पोस्ट देरी से आए हुए हैं कृष्ण। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए हुए हो, कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको तो अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा लग रहा है। तो आज क्या कुछ सुनाने वाले हो?
2: आज हम देशभक्ति रचना सुनाएंगे।
1: देशभक्ति पूर्ण रचना, ठीक है, सुनाइए कृष्ण।
2: भेदभाव आपस के सब भुलाए के चलो, अपने भीतर वाले खामनाए के चलो, सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो, सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो। ई जीवन को कौन भरोसो जियो, देश के लाने काम देश के आजे हो तो नाम अमर हो जाने, काम देश के आजे हो तो नाम अमर हो जाने, सुख दुख अपने मीत समझ अपनाए के चलो, अपने भीतर वाले खामनाए के चलो, सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो। करो संकल्प प्यारे अब को अनपढ़ ना रह जावे, करो संकल्प प्यारे अब को अनपढ़ ना रह जावे, अक्षर ज्ञान सिखा दो अब को ऊठा ना लगावे, अक्षर ज्ञान सिखा दो अब को ऊठा ना लगावे। असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो, असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो, अपने भीतर वाले खामनाए के चलो, सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो, सुख लुटाए के चलो, राम गुण गाए के चलो।
1: बहुत अच्छा गीत आपने बुंदेली में सुनाया है कृष। किस क्लास में पढ़ते हो कृष?
2: मैं फोर्थ में पढ़ता हूँ।
1: फोर्थ में पढ़ता हूँ। आपकी स्कूल का क्या नाम है?
2: शासकीय हाई स्कूल देरी।
1: हाई स्कूल देरी में पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कृष, क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर?
2: मैं पढ़ लिख कर IPS बनना चाहता हूँ।
1: IPS बनना चाहते हैं भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, और खूब मन लगा कर पढ़ना होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं कृष?
2: मुझे मैथ अच्छी लगती है और इंग्लिश अच्छी लगती है।
1: मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ्स और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हो आप, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
2: मैथ में पढ़ते हैं सवाल लगाना, जो हमारी मैम हमारी बुक में से बताती हैं, और इंग्लिश में पोयम पढ़ना, लेसन पढ़ना, ये अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कृष। और क्या सुनाने वाले हैं कृष?
2: रामचरितमानस पर आधारित
1: एक रचना है, चलिए सुनाइए।
2: हमें

0: बिल्कुल, देखिए कैसा संदेश उन्होंने दिया कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और
1: हाँ
0: सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ये रामायण हमें सिखाती है। इसलिए हमें किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी के लिए समान रूप से काम करना चाहिए।
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा क्रिश, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा बताया, आपने ड्रीम के बारे में हमें बताया, बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए क्रिश।
1: धन्यवाद। बाल साथियों, अभी आपने सुना बाल मन से क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान को। उनसे बात कर रहे थे राजेंद्र अहिरवार। बाल साथियों, हम आगामी 21 मई को श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले श्री राजीव गांधी जी की आगामी 21 मई को है पुण्यतिथि। राजीव जी का जन्म बाल साथियों 20 अगस्त वर्ष 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। वे मात्र 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा हेतु वे विदेश गए और वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आपकी संगीत में बहुत रुचि थी और फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्दी ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। बाल मित्रों, राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे अपनी माँ को सहयोग देने हेतु वर्ष 1982 में राजनीति में आए और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर वर्ष 1984 में इंदिरा जी की हत्या किए जाने के बाद वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में भारत की क्षमता विकसित करने में सक्रिय रूप से कार्य किया। आपको भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। आपने आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार किया और विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों की ओर ध्यान दिया। बाल मित्रों, 21 मई वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। मरणोपरांत वर्ष 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाल साथियों, श्री राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व सज्जनता, मित्रता और प्रगतिशीलता का प्रतीक था। लगभग एक दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव जी एक अमिट छाप छोड़कर भारत से विदा हो गए। बाल मित्रों, हमारे पर्यावरण में अनेकों पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि पाए जाते हैं जो सब मिलकर हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। इन जीव जंतुओं में कुछ न कुछ खास बात पाई जाती है। अगर आप इन रोचक तथ्यों और जानकारियों को जानेंगे तो यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। तो चलिए, रोचक जानकारी में आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। बाल मित्रों, गिरगिट एक ही समय में अपनी दोनों आँखों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। गिरगिट की जीभ उसकी कुल लंबाई से लगभग 2 गुनी लंबी होती है। बाल मित्रों, इतनी छोटी सी दिखने वाली चींटियाँ अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। घरेलू चींटियाँ 7 वर्ष तक और रानी चींटियाँ 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, जबकि चींटियाँ कभी सोती नहीं हैं। क्या आपको पता है बाल मित्रों कि पतंगे का खून सफ़ेद रंग का होता है और इनका पेट भी नहीं होता है। टैपवॉर्म एक प्रकार के कीड़े होते हैं बाल साथियों, जिनकी लंबाई आधा इंच से लेकर लगभग 20 फुट तक भी हो सकती है। ड्रैगनफ्लाई जो एक प्रकार की बड़ी मक्खी होती है, उसका जीवन मात्र 20 घंटे का होता है। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली माइडॉस नामक मक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना गया है। बाल साथियों, क्या आपको पता है कि फ्लेमिंगो नाम का पक्षी केवल तभी खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो। बाल मित्रों, केवल चमगादड़ ही एक ऐसा ममल्स है जो उड़ सकता है। हम आपको बता दें बाल साथियों कि गिलहरियां लाल रंग नहीं देख सकती और एक भूखा चूहा अपनी पूंछ भी खा सकता है। वुड पीकर नाम का पक्षी, जिसे हम कठफोड़वा कहते हैं, 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है। बाल साथियों, हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। तितलियां वस्तुओं का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं। बाल साथियों, एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने में लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। मधुमक्खियों की

0: जी रामायण।
1: बहुत अच्छी रचना आपने क्रिश सुनाई है, हमें रोज सिखाती रामायण। रामायण पढ़ते हो क्रिश आप?
0: हाँ पढ़ता हूँ।
1: रामायण पढ़ते हैं, कैसा लगता है आपको जब भगवान राम जी के विषय में आप पढ़ते हो, कैसा लगता है आपको?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रामचंद्र भगवान ने पापियों को मारा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।

20,000 प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां ही शहद बनाने का काम करती हैं। और आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा तय की गई दूरी धरती के लगभग 2 बार चक्कर लगाने जितनी होती है। और इनके लार्वे छत्ते के अंदर रहते हैं जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है। शहद के छत्तों में एक रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये तो थी रोचक जानकारी। और बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय भी हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। ये बात उन्होंने आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन कार्य में कही। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के रूनी लिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस है। इस

0: जिसका उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। राज्य के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30। युववाणी कार्यक्रम 5:02 पर, ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे बुंदेली समाचार और चर्चा। साथ ही 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। 8:15 कार्यक्रम डगर विकास की, विषय है पीएम योजना। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में हम आपको सुनवाएंगे विवेक सोनकर की बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे रामाधीन आर्या के गाए लोकगीत।
1: केतन की गोदी

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए नंद कुमार जैन, तापसी नागराज और श्रुति वर्मा के गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत मिस्टर आशिक से, कुमार सानू की आवाज, इंदिवर का गीत और जतिन ललित का संगीत।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लव लव लव फिल्म का ये नगमा शोभा जोशी की आवाज़ में, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर, नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का जला हुआ कोच लूणी रीछा स्टेशन पर पहुंच गया है। FSL की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जांच कर रही है। और श्योपुर जिले के भोजका गांव के पास आज मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 40 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 4 बजने को है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंथिया जी सुरहान।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावनानी तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु जो कार्यक्रम शुरू कंदासीं हिकु ॼाण सां। हर साल वांगुर हिन साल बि 18 मई ते पूरी दुनिया में विश्व संग्रहालय दिवस मल्हायो वेंदो। हीउ सिर्फ़ हिकु दिवस न आहे, पर असांजी सभ्यता, संस्कृति ऐं विरासत जे एतराम जो हिकु ख़ासि मौक़ो आहे। संग्रहालय उहा जॻहि आहे जिते हर कला मुस्कराईंदी आहे ऐं वक़्तु पंहिंजूं कहाणियूं बयां कंदो आहे। जॾहिं असां कंहिं संग्रहालय में दाख़िल थींदा आहियूं, तॾहिं ई असांखे इहो महसूसु थींदो आहे त ॼण असां वक़्त जे सफ़र ते निकिता आहियूं। उते रखियल पुराणियूं मूर्तियूं, तारीख़ी दस्तावेज, नायाब चित्रकारी, पुराणा सिक्का, हथियार, कपिड़ा ऐं सांस्कृतिक विरासत असांखे उन्हनि दौरनि सां वाक़िफ़ कराईंदी आहे जिन बारे में असां सिर्फ़ किताबनि में पढ़ियो हूंदो आहे। दोस्तों, संग्रहालय सिर्फ़ शयुनि जो संग्रह न आहे, पर उहे असांजी पहचान जो हिकु आइनो आहिनि। उहे असांखे इहे ॿुधाईंदा आहिनि त असांजा जेके बुज़ुर्ग हुआ उहे कीअं रहंदा हुआ, किथे रहंदा हुआ, उन्हनि जी रहणी सहणी कहिड़ी हुई, उन्हनि जी कला, विज्ञान ऐं संस्कृति केतिरी मालामाल हुई। अॼु जे दौर में संग्रहालय जी अहमियत एतिरी वधी वई आहे कि हाणे सिर्फ़ तारीख़ खे महफ़ूज़ रखण तक सीमित न आहे, पर तालीम, तहक़ीक ऐं प्रेरणा जा मर्कज़ बि थी विया आहिनि। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑडियो विज़ुअल जरियान, इंटरएक्टिव डिस्प्ले जे माध्यम सां संग्रहालय नई पीढ़ीअ खे पंहिंजी तरफ़ आकर्षित करे रहिया आहिनि। पूरी दुनिया में संग्रहालय अमन, संवाद ऐं सांस्कृतिक एकता जी निशानी आहे। उहे मुल्कनि, भाषाउनि ऐं सरहदनि खां परे इंसानी सभ्यता जी ख़ासी विरासत खे संभालनि था। संग्रहालय दिवस असांखे इहो पैगाम ॾींदो आहे त असांखे पंहिंजी विरासत खे कीअं संभालणु घुरिजे, उन जी अहमियत खे कीअं समुझणु घुरिजे। हिकु समाज तॾहिं ई मज़बूत थींदो आहे जॾहिं उहो पंहिंजी तारीख़ जो एहतराम कंदो आहे। संग्रहालय असांखे पंहिंजी जड़ुनि सां जोड़णु ऐं उन जी राह ते हलणु सेखारे थो। अचो, हिन संग्रहालय दिवस ते असां इहो प्रण कंदासीं कि पंहिंजी संस्कृति ऐं विरासत खे महफ़ूज़ रखण में असां बि पंहिंजो योगदान ॾींदासीं। त दोस्तो, इन ॼाण खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जो ॻायल हीउ सुहिणो ऐं प्यारो गीतु।

साबुण जा तिरकने चढ़न डाका चार जे टे तिरकी हेठ किरने घर निकरी अचन घिटिया में साई सह क्यों प्यास सह कने अलमु।

न कटाए उन किना लेला नैलन जी या सनड़ी साड़ी पाए नकी लाल लिपस्टिक लबन ते नकी मुँह ते रूज लगाए यो पर्स प्लास्टिक जो खणी वन रोज न शॉपिंग लाए ओ चरी 14 कैरेट सोन जा कूड़ा जेवर की न घड़ाए

दोस्तों, हर साल 21 मई ते भारत भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं अमन, इंसानियत, भाईचारे ऐं मुल्क जी एकता जो पैगाम ॾींदो आहे। ही ॾींहुं आतंकवाद जे ख़िलाफ़ आवाज़ खणणु, मासूम ज़िंदगियुनि जी क़ुर्बानीअ खे यादि करणु ऐं नौजवाननि में जागरूकता पैदा करण लाइ ही मल्हायो वेंदो आहे। आतंकवाद सिर्फ़ हिकु मुल्क या हिकु समाज लाइ ख़तरो न आहे, पर ही पूरी इंसानियत लाइ हिकु गंभीर चुनौती आहे। जिते आतंकवाद हूंदो आहे, उते अमन ख़तमु थी वेंदो आहे, बेगुनाह ज़िंदगियूं तबाह थी वेंदियूं आहिनि ऐं समाज में डपु ऐं नफ़रत फैलिजी वेंदी आहे। भारत में ही दिवस ख़ासि तौर सां उन मासूम माण्हुनि खे यादि करण लाइ मल्हायो वेंदो आहे, जेके आतंकवादी घटनाउनि में पंहिंजी जान गवाए चुका हूंदा आहिनि। अॼु जे दौर में ज़रूरत आहे त असां पंहिंजे नौजवाननि खे अमन, सहनशीलता ऐं इंसानियत जो सबक़ ॾियूं। समाज में नफ़रत जे बदिले मोहबत ऐं अहिंसा जे बदिले भाईचारे खे वधायूं। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस असां सभिनी खे ही इहो ई संदेश थो ॾिए त असां मुल्क जी सुरक्षा, एकता ऐं अमन लाइ हिकजुट थी करे कमु कयूं। अचो असां बि इहो प्रण कयूं कि हर क़िस्म जी हिंसा, आतंकवाद ऐं नफ़रत जे ख़िलाफ़ मजबूतीअ सां बीहंदासीं ऐं अमन, इंसानियत जो पैगाम पूरी दुनिया में फैलाईंदासीं। दोस्तो, हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ ॿुधंदासीं महेश चंद्र जो ॻायल ही प्यारो गीतु।

0: दोस्तों छुट्टियों हली रही आहिनि, ॿार पंहिंजा बस्ता फिटी करे मौज पिए था माणनि। छुट्टियुनि में त सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि यादि ईंदी आहे, नानीअ जो घर ऐं नानीअ जूं आखाणियूं। हाणे त मोबाइलुनि जो ज़मानो अची वियो आहे, ॿार पंहिंजी मोबाइलुनि में ही मस्तु रहंदा आहिनि। पहिरियों त कीअं नानी ॾाॾीअ खां आखाणियूं ॿुधी पंहिंजो ॾींहुं कटिबो हो, किथे रहियो आहे उहो ज़मानो। पर मां त इहो ई चवंदसि कि पंहिंजे ॿारनि खे नानियूं ॾाॾियुनि जे अॻियां विहारे उन्हनि खे आखाणियूं ज़रूरु ॿुधारायो। त अचो असां बि अनुराधा लालवाणीअ जी आवाज़ में ॿुधूं था हिकु आखाणी।
1: कहाणीअ जो सिरो आहे तर्पण। आख़िर नानीअ जे वञण खां पोइ सभिनी खे ॾाढो ॾुखु थियो। सभिनी अखियुनि मां थोरा थोरा ॻोढ़ा वहाया। बसि नानी जूं नानीअ जूं यादगिरियूं ई बाक़ी रहिजी वियूं। नानीअ खे पुटु न हुयुसि, सिर्फ़ु टे धीअर अंजू मंजू संजू हुयूं, ॾोहिटो ऐं पाड़ेसिरी पुटु नारायण, जेको ॾुख सुख में कमु ईंदो हुयुनि। उन्हनि मिली करे नानीअ जो अंतिम संस्कार कयो। संस्कार करे सभई मोटी आया। उन वक़्त बि सभिनी थोरियूं थोरियूं सिसकियूं भरियूं, पोइ सभई चुप करे वेही रहिया। विधवा धीउ अंजू ख़ूब रुनी। घर में हुन जो हिकु सहारो नानी ई हुई, उहा बि हाणे हली वई। अंजू बिल्कुलु अकेली थी वई हुई। अंजूअ खे आथत ॾींदे ॾींदे संजू नानीअ जूं सभु पुराणियूं ॻाल्हियूं यादि करणु लॻी। जॾहिं खां नानीअ हिन मोहल्ले में कमिरो वरितो हुयो, सभई पाड़े वारा नानीअ खे अम्मा अम्मा करे सॾींदा हुया ऐं सार संभाल लहंदा हुया। कॾहिं नानीअ खे कुझु थी वञे त कोई दवा वठी अचे त कोई सेवा करणु अची वेंदो हुयो। अंजू बि पाड़े वारनि ऐं उन्हनि जे ॿारनि सां हिरी मिरी वई हुई। सभिनी ॿारनि खे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारींदी हुई। शैतान ॿारनि खे बि पंहिंजे प्यार सां मोहे उन्हनि खे सुधारे छॾींदी हुई। नानीअ जी उमिरि लॻभॻि 90 साल

0: ॻाल्हि हुई। त बि हूअ ॾाढी सुहिणी नज़र ईंदी हुई। उन खे अक्सर कमर जे सूर जी शिकायत रहंदी हुई। त बि घर जी साफ़ सफ़ाई अहिड़ी रखंदी हुई कि घर पियो चमकंदो रहंदो हुयुसि। पंहिंजो नंढो वॾो कमु सभु पाण करण में विश्वास रखंदी हुई। नानीअ जी भॻवान में ॾाढी श्रद्धा ऐं पूॼा पाठ में ॾाढो विश्वास हुयुसि। जॾहिं बि ॿार पाण में विढ़ंदा हुया, नानी उन्हनि खे सुठी ॻाल्हियूं करे समझोतो कराईंदी हुई ऐं समझाईंदी हुई, झगड़ो करणु ख़राब ॻाल्हि आहे, मिली जुली रहणु सुठी ॻाल्हि आहे। नानीअ जूं इहे ॻाल्हियूं ॿारनि खे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं हुयूं ऐं ॿार बि मञींदा हुयसि। हिकु ॾींहुं हिकु ॿार कंहिंखे नवां कपिड़ा ॾिसी मशिरजी वियो ऐं चवण लॻो, मूंखे बि अहिड़ा ई कपिड़ा घुरिजनि। उन जी माउ ॿार खे मारण लॻी त नानी ॿार जो रोअण ॿुधी उते पहुती ऐं चयाई, ॿार कंहिं शइ लाइ जिद न कंदा त उहे ॿार कहिड़ा, भला छा वॾा जिद कंदा? ॿारनि जो त इहो ई कमु आहे। मारण सां त ॿार अञा बिगड़ी वेंदा, उन्हनि खे प्यार सां ऐं मिठड़ी ॻाल्हियुनि ज़रिए सही रस्ते ते आणणु घुरिजे। वॾनि वातां ॿुधो हुयो कि औलाद न थियण सबबि नाने ॿी शादी कई हुई। पहिरीं ज़ाल बिना औलाद भॻवान ॾे हली वई ऐं ॿीअ ज़ाल नानीअ मां टे धीअर ई पैदा थियसि, कोई छोकिरो न। हिकु ॾींहुं अचानक नानीअ जो पेर बाथरूम में तिरकी वियो ऐं हूअ किरी पई। नानीअ खे ॾाढो सूर थी रहियो हुयो ऐं हूअ अंधाहूं करे रही हुई। सभई पाड़ेसरी अची गॾु थी विया। सभिनी खां पहिरियां त नानीअ खे मथे खणी सुम्हारियो वियो, पोइ कंहिं हेड चूनो लॻायो त को सेक करण लॻो त कोई दवा ॾेई रहियो हो, पर पोइ बि नानीअ जो सूर घटि कोन थी रहियो हो। सभिनी फ़ैसिलो कयो कि ॿियनि धीअरुनि खे बि घुरायो वञे ऐं नानीअ खे अस्पताल वठी वञिजे। नानीअ जूं धीअर ॿिए ॾींहुं आयूं। तेसिताईं नानीअ जी हालति ॾाढी ख़राब थी चुकी हुई। टंग सुजी पई हुयसि, शायदि हॾी टुटी पई हुयसि। जीअं तीअं चार माण्हुनि नानीअ खे चादर में विझी चइनि कुंडुनि खां पकिड़े चौथी मंजिल तां हेठि लाहे अस्पताल वठी विया। डॉक्टरनि जांच खां पोइ ॿुधायो कि टंग में फ्रेक्चर आहे, ऑपरेशन थींदो। नानीअ खे भर्ती करायो वियो। सभई जांचूं करण खां पोइ ऑपरेशन कयो वियो। नानीअ जी सुंदरता ऐं सफ़ाई ॾिसी सभई हैरत कंदा हुया। नर्सूं नानीअ खे ॾाढो प्यार कंदियूं हुयूं ऐं वरी वरी अची मथे ते हथु घुमाए प्यार जो इज़हार कंदियूं हुयूं ऐं चवंदियूं हुयूं, नानी केतिरी सुहिणी आहे। गिल ते कारो मसो नानीअ जी सूंहं अञा वधाए रहियो हो। नानीअ जो ऑपरेशन त सही थियो, पर कमर ॾे डॉक्टरनि ध्यानु ई न ॾिनो। नानीअ जी कमर ॾे ध्यानु न ॾियण सबबि नानी कॾहिं उथी न सघी। हिकु खट ते ई लेटी पई दाहूं कंदी हुई। उते ई खाइणु पीअणु सुम्हणु हलंदो रहियुसि। सेवा करे करे आख़िर सभई परेशान थी विया। सभिनी जी प्यारी नानी आख़िर पंहिंजा आख़िरी ॾींहं ॻण लॻी। आख़िर अहिड़ी हालत में हूअ केतिरा ॾींहं जिंदा रही हा? आख़िर हिकु ॾींहुं नानीअ पंहिंजे जीवन जो आख़िरी साह खयो ऐं सभिनी खे अकेलो छॾे हली वई। नानीअ जे मौत जो कंहिंखे वधीक ॾुख न थियो, बल्कि संतोष मिलियो कि नानीअ जा ॾुख ऐं तकलीफ़ूं नानीअ साण ई हली वयूं। नानीअ जी मौत ते सभिनी पंहिंजा ॿ ॻोढ़ा ॻाड़े नानीअ जी अस्थियुनि जो तर्पण कयो। महिरबानी
1: दोस्तो, अॼु असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत जी ॻाल्हि कंदासीं जिन पंहिंजी सोच, हिमत ऐं सुधारवादी वीचारनि सां समाज खे हिकु नई दिशा ॾिनी। हर साल 22 मई ते

राजा राम मोहन राय जी जयंती जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जे जनम दिवस जे रूप में यादि कयो वेंदो आहे। उहे भारतीय नवजागरण जे पिता जे नाले सां मशहूरु आहिनि। उहे हिकु अहिड़ा दूरंदेश इंसान हुआ जिन समाज में फैलियल घणनि ई बुराइयुनि जे ख़िलाफ़ पंहिंजी आवाज़ खई। हुननि सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास ऐं सामाजिक असमानता जे ख़िलाफ़ मज़बूत संघर्ष कयो। उन्हनि जाइफ़ाउनि जे अधिकारनि, शिक्षा ऐं सम्मान लाइ अहम कमु कयो आहे। उहे पंहिंजे दौर सां काफ़ी अॻियां जी सोच रखंदा हुआ। उन्हनि शिक्षा खे समाज जी तरक़ीअ जो सभिनी खां वॾो ज़रियो सम्झो। अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान ऐं आधुनिक वीचारधारा खे भारत में मज़बूत करण में उन्हनि जो योगदान बेहद अहम रहियो आहे। उहे सिर्फ़ समाज सुधारक न हुआ, पर इंसानियत, समानता ऐं तरक़ीअ जा पैगंबर हुआ। उन्हनि ब्रह्मो समाज जी स्थापना कई, जंहिं जो मक़सदु समाज में धार्मिक सुधार, एकता ऐं इंसानी बराबरीअ खे वधाइणु हुओ। अॼु जे दौर में बि उन्हनि जा वीचार असां लाइ ओतिरा ई ज़रूरी आहिनि, जॾहिं असां समाज में शिक्षा, जाइफ़ाउनि जी सुरक्षा, बराबरी ऐं इंसानियत जी ॻाल्हि करियूं था। उते इन्हनि जी सोच असांखे राह ॾेखारींदी आहे। समाज मां हर क़िस्म जी बुराई, अंधविश्वास ऐं भेदभाव खे ख़तमु करण जो योगदान असांखे बि ॾियणु घुरिजे। दोस्तो, जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुयमि त छुटियूं हली रहियूं आहिनि ऐं मिजमाननि जी अचवञ त लॻी पई हूंदी आहे। कंहिंजे घर धीअर पियूं अचनि त कंहिंजूं नूअर पियूं वञनि। त अचो इन्हीअ ते ई ॿुधूं था महेश चंदर जी आवाज़ में ॻायल ही सुहिणो गीत।

0: खाई रुखी सुखी मां रोटी घर जे अंदर घुमंद से दीह गुजारे सांजिए धारे चादर ताणे सुमंद से
1: साईं चादर ताणे सुमंद से वावा चादर ताणे सुमंद से
0: मुड़त चयो मिजमान मथा जिंद जान कभी कुर्बान।

0: ॾिसी न मिज़मान कयाऊं उन जो आदर भाव पहिरीं राति ॾिनऊं हुनखे खासो बोड़ पुलाव
1: साईं खासो बोड़ पुलाव वाह वाह खासो बोड़ पुलाव।

0: से
1: माल मलीदा खाई साईं घिटिया घिटिया में घुमंद से घुमी समूरो शहर रात जो सेज पलंग ते सुमंद से
0: साईं सेज पलंग ते सुमंद से वाह वाह सेज पलंग ते सुमंद से
1: एड़ा

0: रही पियो मिज़मान हुनन भी भायो पंहिंजो भाग खेस ॾिनाऊं सादी रोटी सूरण जो ई साग
1: साईं सूरण जो ई साग वावा।

0: से
1: तूरण सां गॾु चांहि चखे मां घाटा जंगल घुमंदुसि फिके खीर सां खिचड़ी खाई संदल ते ई सुम्हंदुसि
0: साईं संदल ते ई सुम्हंदुसि वाह वाह संदल ते

सोचण वेठा सभु घर वारा हीअ त गरी थी ॻाल्हि खेसि ॾिनऊं अणबो ढोढो मिर्चनि वारी दाल।

0: चनवारी दाल कटेमा जबल पहाड़ियों घुमंद से जूठी सूठी ओबर खाई धरती ते ही सुमंद से
1: साई धरती ते ही सुमंद से वाह वाह

ڈنڈو سائیں مڑ سکھیو تیے ڈنڈو۔

दोस्तों हाणे वक्त थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नए कार्यक्रम सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां। सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंथिया जीत सुरहान। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल,

0: पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी।

नमस्कार श्रोतागण, आशा करती हूँ हमारे साथ साथ आप भी इस महान ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं। पिछली कथा में आपने सुना दमनक ने कर्कट को विष्णु रूपी धृष्ट कौलिक की कहानी सुनाकर ये बताया कि अगर कोई योजना सुनियोजित ढंग से की जाए तो वो अवश्य सफल होती है। अब आगे

0: भाई करखट, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है?
1: मित्र दमनक, तुम्हारा कहना ठीक है, फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि संजीवक अत्यंत बुद्धिमान है तथा स्वभाव का क्रोधी भी हो गया है। मैं तुम्हारे प्रतिभा संपन्न होने में तनिक भी संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु पिंगलक से संजीवक की मित्रता तोड़ने में तुम समर्थ हो सकोगे, इस पर मुझे संदेह है।
0: अरे करकट, अगर मैं असमर्थ हूँ तो भी मुझे समर्थ समझो।
1: क्यों भला?
0: बुजुर्ग कह गए हैं कि जहां पर पराक्रम काम ना आ सके वहां चतुराई से चाल चलनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे काक ने उपाय के द्वारा सोने के एक हार से काले सर्प का विनाश किया था।
1: अच्छा।
0: सुनो, किसी स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष था। उस पर काक दंपति निवास करते थे।
1: अच्छा।
0: उसी पेड़ की कोटर में एक काला विषधारी सांप रहता था। जब भी काक दंपति किसी शिशु को जन्म देते, वो सांप आकर उसे मार डालता। काक और काकी दोनों अत्यंत दुखी थे।
1: स्वाभाविक है।
0: एक बार उसने अपने मित्र श्रीगाल से कहा,
2: काक भाई, क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई देते हो, कुछ तो बताओ।
3: क्या कहूं, वो दुष्ट आत्मा काला सांप हर बार अपने कोटर से निकलकर हमारे शिशुओं को खा लेता है। उससे बचने का कोई उपाय बताओ जिससे हम चैन से रह सकें।
2: मैं समझता हूँ काक भाई, जिसकी भूमि नदी के किनारे हो, जिसकी स्त्री पर पुरुष गामिनी हो और जिसका सांप वाले घर में निवास हो, वो व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है।

0: उस पेड़ पर निवास करना प्राण संकट कारक ही है।
1: तो क्या हम अपना निवास बदल लें? परंतु वो सांप उधर भी पहुंच जाए तो हम उसे कैसे पराजित करें?
0: मित्र, इस विषय में आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस लोभी सर्प को उपाय द्वारा पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यधिक लोभ के कारण ही एक वक्त छोटी बड़ी मछलियों को खाने के बाद भी केकड़े के पकड़ने से मृत्यु को प्राप्त हुआ।
1: कैसे?
0: किसी वन में अनेक जलचरों द्वारा भरा हुआ एक सरोवर था। उसमें निवास करने वाला एक वक्त वृद्धावस्था के कारण मछलियों को मारने में असमर्थ हो चुका था। अतः भूख से अत्यंत व्याकुल होकर वो रो रहा था। उसे रोता देखकर अन्य जलचरों और एक केकड़े ने उसके पास जाकर सादर कहा,
2: वक मामा, क्या हुआ? आप इस प्रकार आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? दो दिन से देख रहा हूं मैं, आप केवल आंखों में आंसू भरकर दीर्घ निश्वास ले रहे हैं। मामा, भोजन भी नहीं किया आपने, क्या बात है?
3: बस, आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं। अरे, मैं बड़ा दुखी हूं। इस कारण मछलियों को खाने से वैराग्य ग्रहण करके मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अपने प्राण छोड़ने का व्रत लिया है मैंने। इस कारण समीप आई हुई मछलियों को भी मैं नहीं खा रहा हूं।
2: परंतु मामा, आपके वैराग्य ग्रहण करने का क्या कारण है?
3: वत्स, मैंने इसी सरोवर में जन्म लिया है, यहीं पर वृद्ध भी हुआ। परंतु मैंने सुना है कि बहुत शीघ्र ही यहाँ 12 वर्षों के लिए सूखा पड़ने वाला है।
2: अरे, परंतु मामा, ये आपने किससे सुना?
3: देवज्ञों से ज्ञान हुआ, यदि शनि रोहिणी से शकट का भेदन करता है तो इंद्र 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल की वर्षा नहीं करता। इसी सरोवर में थोड़ा ही जल है, यदि अनावृष्टि हुई तो यह शीघ्र ही सूख जाएगा, और होने पर सभी जलचर जिनके साथ में खेला बड़ा हुआ वे सभी जल के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। मैं उन सब का विनाश कैसे देख पाऊंगा? इसीलिए मैंने मरण व्रत लिया है।
2: मामा, क्या इन सब की रक्षा का कोई उपाय नहीं है?
3: उपाय तो एक है, परंतु पता नहीं सब सहमत होंगे या नहीं। इस समय सभी बड़े जल जीव छोटे जल जीवों को दूसरे जलाशयों में पहुंचा रहे। मकर, जलहस्ती आदि बड़े जानवर तो स्वयं ही जा रहे, परंतु इस जलाशय के जलचर जैसे निश्चिंत होकर बैठे। इन सब का तो अवशेष भी नहीं बचेगा।
2: नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं, हम सभी भयभीत हैं। आप जैसा उपाय बताएंगे हम सब वैसा ही करेंगे। हाँ,
3: अगर तुम सब यही चाहते हो तो सुनो, इस जलाशय से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत गहरा जलाशय, चारों ओर कमल से सुशोभित, 24 वर्षों की अनावृष्टि से भी वो नहीं सूखता। यदि कोई मेरी पीठ पर चढ़े तो मैं उसे वहां पहुंचा सकता हूं।
4: ले चलो भाई, ले चलो
2: मामा, पहले मुझे ले चलो
4: भैया, ले चलो
2: पहले मुझे, ले चलो मामा, पहले मुझे मामा, पहले मुझे, पहले देखो मुझे पार ले चलो मामा।
0: दुष्ट मन से वह वक एक एक करके जलचरों को पीठ पर चढ़ाकर जलाशय के उद्देश्य से उड़ता और थोड़ी दूर जाकर एक बड़े से पत्थर पर ले जाकर पटक देता। फिर अपनी इच्छा अनुसार भोजन करने के बाद पुनः उस जलाशय में आकर जलचरों को नाना प्रकार से झूठी कहानियां सुनाता और सबका मनोरंजन करता। इस प्रकार उस दुष्ट वक की जीविका आनंद पूर्वक चलती रही। एक दिन

0: मामा, आपकी बात सबसे पहले मुझसे हुई थी और मुझे छोड़कर आप दूसरों को पहले ले जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा, आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आज आपको मेरी प्राण रक्षा करनी ही पड़ेगी।
1: ठीक ही तो है, मछलियों का मांस खाते खाते मैं ऊब चुका हूं। चलो आज इस केकड़े का मांस खाता हूं।
2: क्यों नहीं, बस क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
0: मामा, वो जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे। ये नीचे शिला पर हाड़ मांस के टुकड़े कैसे पड़े हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? क्यों मामा, और कितनी दूर रह गया है?
2: अरे मूर्ख केकड़े, दूसरा जलाशय है ही कहाँ? अरे ये तो मेरी चाल है, मेरी जीविका का साधन। आज तेरी बारी है, अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले। तुझे भी मैं इसी पत्थर पर पटक पटक कर मार डालूंगा।
0: दुष्ट, तूने उन निर्बल जलचरों के साथ जो अन्याय किया उसका फल तुझे भोगना ही होगा। ले दुष्ट, ले मर।
1: केकड़े ने अपने मुंह से उस बक के गले को इस प्रकार दबाया कि उसके प्राण निकल गए। फिर वो केकड़ा मृत बक की ग्रीवा को लेकर धीरे धीरे उस सरोवर के पास लौटा। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सी मछलियों को खाकर भी वह वक बुद्धिमान और सजग केकड़े के हाथों मारा गया। उस सांप को मारने का कोई उपाय सोचना होगा।
3: तो आप ही बताएं भद्र, वो दुष्ट कैसे मारा जा सकेगा?
1: आप किसी ऐसे नगर में चले जाएं जहां राजा निवास करता हो। वहां जाकर राजा, उसके मंत्री अथवा किसी भी धनी व्यक्ति को थोड़ा असावधान पाते ही उसके स्वर्ण हार को उठा लें और ले जाकर सांप की कोटर में डाल दें, जिससे हार लेते समय वो मारा जाए।
4: श्रीगाल की बात को सुनकर काक उसी समय लक्ष्य की ओर उड़ गया।
5: उस तालाब पर किसी रानी की सवारी विश्राम कर रही है। वाह, महारानी अपनी सखियों के संग जल से खेल रही हैं। आभूषण एवं वस्त्र किनारे रखे हैं। यही मौका है, मैं ये रत्नहार उठा लेता हूं। हाँ हाँ, पकड़ो मुझे। मैं इन्हें चकाते हुए उसी पेड़ तक ले जाता हूं। हाँ, अब मैं हार को सांप के कोटर में डाल देता हूं।
6: और फिर राज सैनिकों ने उस वृक्ष पर चढ़कर

0: उस कोटा का निरीक्षण किया।
1: अच्छा,
0: तो वो काला सांप अपने फन को फैलाकर बैठा हुआ दिखाई पड़ा।
1: ओहो,
0: सैनिकों ने लाठी के प्रहार से उस सांप को मार डाला।
1: अरे वाह,
0: और रत्नहार लेकर चले गए। और उस दिन से वो काक दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगा।
2: सच है दमनक, बुद्धि द्वारा जो किया जा सकता है पराक्रम द्वारा नहीं किया जा सकता।
0: हाँ,
2: बुद्धिमानों के लिए कोई भी समस्या असाध्य नहीं होती। किसी घने जंगल में भासुर नाम का सिंह रहता था। वो अपने बल का प्रयोग सारे जंगली जानवरों पर करता था। वो जिसे चाहता मार कर खा जाता था।
0: अच्छा,
2: फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसके भय से सभी त्रस्त थे। एक बार सभी जानवरों ने तय किया कि जाकर सिंह से निवेदन किया जाए। तो ये सोचकर सभी सिंह के पास पहुंचे। बूढ़ा रीछ बोला,
3: स्वामी, हम सब आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं, कृपया उसे स्वीकार करें।
4: आप आदेश करें रीछ दादा, मैं तो सदैव से ही जंगल की भलाई चाहता हूं।
3: जानता हूं बेटा, तुम ही तो हमारे रक्षक हो। प्रतिदिन अनेक वन्य पशुओं को मारने से क्या लाभ, क्योंकि आपका पेट तो केवल एक ही जीव से भर जाता है। अगर हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक एक नियम तय कर लिया जाए कि यहाँ बैठे बैठे आपके पास हमारे बीच से आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु जाति क्रम से आ जाया करेगा, इस प्रकार बिना किसी श्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हमारा सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। आप राजा के इस धर्म का पालन करें।
4: आप सबका कहना ठीक है, इससे मुझे तो आराम मिल ही जाएगा, परंतु यहाँ बैठे बैठे नित्य एक पशु नहीं आया तो मैं सबको मार के खा जाऊंगा।
3: आप चिंता ना करें महाराज, आपका भोजन प्रतिदिन समय पर आप तक पहुंच जाया करेगा।
4: ठीक है।
5: अब तो सिंहराज के मजे ही मजे हो गए, बिना किसी श्रम के नित्य ही भोजन पहुंच जाता, और उधर पशुओं ने भी चैन की सांस ली। वन्य पशु निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगे। नित्य एक पशु जाति क्रम से, चाहे वो वृद्ध हो, वैरागी हो, शोकग्रस्त हो, दोपहर के समय उस भासुर के भोजन के लिए उपस्थित हुआ करता था। एक बार एक खरगोश के जाने का अवसर आया। उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु नियम के अनुसार उसे जाना ही था। वो धीरे धीरे चलने लगा।
6: हाय, मेरे सारे पूर्वजों को इस भासुर के पेट में जाना पड़ा। मेरे कितने साथी भी चले गए। पता नहीं कब तक इस सिंह को भोग लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुष्ट भासुर ही मर जाए? अरे, ये क्या है? ये तो कुआं है। इसकी तो मुंडेर भी नहीं है। देखूं तो, अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। अभी मैं ध्यान नहीं देता तो डूब जाता। उधर भासुर तो प्रतीक्षा में बैठा होगा। क्या करूं?
4: धोखा, मेरे साथ धोखा। दिन ढल गया, अभी तक मेरा भोजन नहीं आया।

0: भूख से मेरी बुरी दशा हो गई है। रीच दादा के कहने पर मैंने इस बात को माना था। अब अगर कुछ ही क्षणों में मेरा भोजन नहीं आया तो मैं कह डालूंगा। वो कौन है? ये तो खरगोश है, ये एक शशक। कल सुबह तक मैं इस जंगल को जीवनहीन कर दूंगा।
1: प्रणाम महाराज, मैं आ गया।
0: बड़ा एहसान किया। सुबह से भोजन की प्रतीक्षा में बैठा हूं, दिन ढल आया, अब आ रहे हो, क्यों इतनी देर लगाई?
1: बस महाराज, आ गया, यही क्या कम है? अधिक विलंब ना करें, अब मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करें।
0: भोजन? तुम एक कृशकाय खरगोश से मेरा क्या होगा? अब मेरे कोप से इस वन को कोई नहीं बचा सकता।
1: स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही अन्य वन प्राणियों का। विलंब का तो कुछ और ही कारण है।
0: शीघ्र कहो, जब तक तुम मेरे मुंह के अंदर नहीं चले जाते उसके पूर्व जो कहना है कहो।
1: स्वामी, जाति क्रम से आज मेरे जैसे लघुकाय जीव का अवसर समझकर रीच दादा ने मेरे जैसे 5 खरगोश को भेजा था, परंतु रहने दीजिए, आप क्रोधित हो जाएंगे।
0: शशकादम, क्रोधित क्या भी कम हूं? शीघ्र बताओ, वो 4 खरगोश कहाँ गए?
1: अब धीरज रखे महाराज, बताता हूँ। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे शक्तिशाली सिंह ने हमें रोक लिया था। गुफा से निकलकर उसने हमें पकड़ लिया और बोला, इष्ट देव का स्मरण कर लो। मैंने जब कहा कि हम अपने स्वामी भासुर के पास उनके भोजन के लिए जा रहे हैं, तो उसने कहा, ये बात सत्य नहीं है, इस वन का राजा तो मैं हूँ, तुम सभी वन्य प्राणियों को मेरे साथ नियमबद्ध होकर रहना चाहिए।
0: क्या कह रहे हो? उस दुष्ट ने ऐसा कहा, उसे यमराज का भी भय नहीं।
1: और उसने ये भी कहा कि भासुर तो चोर है, यदि वे यहाँ का राजा है तो मैं इन 4 खरगोशों को जमानत के रूप में रखता हूँ, और तुम जाकर उस भासुर को बुला लाओ। हम दोनों में से जो शक्तिशाली होगा वही इस वन का राजा होगा और वही इन खरगोशों को भी खाएगा। उसी की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे देर होने का यही कारण है। अब आपकी क्या आज्ञा है स्वामी?
0: यदि तुम्हारा कहना सही है तो उस चोर और दुष्ट सिंह को मुझे शीघ्र दिखाओ, जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं।
1: धन्य है आप महाराज, धन्य है, आप तो वीर क्षत्रिय हैं, परंतु आपका ये शत्रु दुर्ग का आश्रित है। दुर्ग में रहने वाला शत्रु अजेय होता है। आप तो दुर्गहीन हैं, दुर्गहीन राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में आ जाता है।
0: कोई बात नहीं, फिर भी मुझे उस सिंह को दिखाओ।
1: स्वामी का कहना यथार्थ है, फिर भी मैंने देखा है वह बलवान है, उसकी शक्ति की जानकारी लिए बिना जाना उचित नहीं है।
0: तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन है? वो दुर्ग में हो चाहे शक्तिशाली हो, मुझे उसे दिखाओ।
1: यदि ऐसी बात है तो स्वामी चले।
0: हाँ।
1: आइए। इधर से महाराज। हाँ, बस आ गया। अरे, यही तो था, गया कहाँ? महाराज, आपके तेज को कौन सह सकता है? दूर से ही आपको आते हुए देखकर वे चोर से अपने दुर्ग में घुस गया होगा। आइए अभी दिखाता हूँ
0: कहाँ है उसका दुर्ग।

उस खरगोश ने रास्ते में जो कुआं देखा था उसी को दूसरे सिंह का दुर्ग बता दिया। फिर वो मूर्ख भासुर कूप के अंदर झांक कर गर्जना करने लगा। गर्जना की उस कुएं में दुगनी प्रतिध्वनि हुई, साथ ही अपनी छाया को भी देखा। उसी प्रतिबिंब को शत्रु समझकर उस पर कूद पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। और फिर खरगोश के सकुशल लौटने पर सारे वन में उत्सव का माहौल हो गया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। आगे दमनक और करकट ने क्या किया ये सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है और दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा, सतत विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर

0: जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का कल का जला हुआ कोच लूनी रीछा स्टेशन पर पहुंच गया। FSL की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच कर रही है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा एक और विषय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें, पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात। क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही दोस्तों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। दोस्तों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें दूर संचार ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। इसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 17 मई सन 1865 को हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ाना तथा डिजिटल असमानता को कम करना है। दोस्तों, दूर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले समय में संदेश भेजने के लिए पत्र, दूतों का सहारा लिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं दूर संचार की ही देन है। दोस्तों, सूचना समाज का अर्थ है ऐसे समाज से जहां ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होता है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं और व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, यदि इंटरनेट और दूरसंचार सुविधाएं ना होती तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी और इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करना बेहद आवश्यक है। भारत में भी डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंच पा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यह देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में संचार और सूचना तकनीकी के महत्व को दर्शाता है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।
1: हेलो हेलो,

0: देखो ना कैसा मौसम है।
1: आ जाओ ना।
0: ना बाबा ना, यही तो मुश्किल है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क, आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो हृदयघात, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। अत्यधिक नमक का सेवन, तेलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मानसिक तनाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को शारीरिक रूप से कम सक्रिय बना दिया है, जिसके कारण युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों का निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के बचाव के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद, कम नमक का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करवाए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनमें 7 बातें प्रमुख रही। पहली, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विदेश यात्रा टालने की अपील की। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग पर जोर देने को कहा। खाद व केमिकल का उपयोग कम करने को कहा। स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। साथियों पेट्रोल डीजल की कम खपत से हमारा ही फायदा है। यदि हम वाहनों का उपयोग सीमा में करें तो पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी। इससे पेट्रोल डीजल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। साथियों इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पर्यावरण का भी बहुत फायदा होगा, अर्थात प्रदूषण कम होगा। दोस्तों साथ ही इसके पीछे का एक और कारण विदेशी मुद्रा का बचाव भी है। दोस्तों यदि आप पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभप्रद है। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारी आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचें पर चर्चा करने का। साथियों आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग मोबाइल एडिक्शन अर्थात मोबाइल की लत कहलाता है। यह समस्या आज बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस करना और हर समय मोबाइल का उपयोग करते रहना। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने तक इसका उपयोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो और चैटिंग ने लोगों को मोबाइल का आदि बना दिया है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने लगी है। दोस्तों मोबाइल की लत का सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्या होने लगती है। लगातार मोबाइल चलाने से गर्दन और पीठ में दर्द भी होने लगता है। साथियों देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी भी उत्पन्न होती है। साथ ही मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और परीक्षा परिणाम प्रभावी होते हैं। साथियों मोबाइल की लत से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और गेम से दूर रहना चाहिए। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग करते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। दोस्तों मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभप्रद है। हमें तकनीक का गुलाम बनने की बजाय उसकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन और अच्छे संबंध, उज्जवल भविष्य के लिए मोबाइल एडिक्शन से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
7: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या?

0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर,
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
5: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत। बहुत ही सुपरहिट गीत है, फिल्म है आशिकी, सुमधुर आवाज़ अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल से, स्वर है अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाटकर की, शब्द रचना समीर की और इसे संगीतमय बनाया है आनंद मिलिंद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बहार आने तक से। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल, पंकज उदास और साथियों की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म लेकिन से, आवाज़ है सुरेश वाडकर की। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ये दिवस स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, पौष्टिक आहार, योग और अनुशासन से तनाव मुक्त बने रहने के लिए हमें जागरूक करता है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखा है। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लेकर हम आए हैं एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत। श्रोताओं, पहला गीत हमने लिया है फिल्म पैडमैन से। स्वर है अरिजीत सिंह के, शब्द रचना कौसर मुनीर की और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

कभी खुशी कभी गम। आई श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। ये गीत लिखा है अनिल पांडे ने और इसे संगीतमय बनाया है संदेश शांडिल्य ने।

लीजिए अब सुनिए। ग्लेन जोन की आवाज में फिल्म वो लम्हे का गीत। सईद कादरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

अक्षय घोषाल की आवाज़ में अब हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का। फिल्म है जब वी मेट।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है डर, सुमधुर आवाज उदित नारायण की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शिवहरी ने।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कुर्बान का ये गीत। ये गीत गाया है अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे हम बोलेंगे ये गीत लिखा है हसन कमल ने और उसकी धुन बनाई है रवि ने स्वर सलमा का की।

अनपढ़। आइए श्रोताओं, सुनाते हैं हम आपको इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का।

कार्यक्रम में एक और बहुत प्यारा सा गीत हमने लिया है फिल्म आराधना से, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म यकीन से, स्वर है रफ़ी के, गीत लिखा है हज़रत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउड डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन

0: संस्थान एनआईडी में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें, आज शाम की सभा के शेष एवं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा प्रसारित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत आज आप 7:30 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें विषय होगा ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अशोक वर्मा। इसके बाद रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। इस कार्यक्रम में विषय होगा पीएम श्री योजना। वाचन स्वर होंगे अमित त्रिवेदी के, प्रस्तुत करता है मनीष गजबिये। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी भोपाल की। रात्रि 9:30 नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 अखिल भारतीय रवि वासरी संगीत सभा में आप सुनिएगा विवेक सोनकर का बांसुरी वादन।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम पुनः सुन लीजिए। आज रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे विवेक सोनकर का बांसुरी वादन।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल पेश किया जाएगा। 8:30 कार्यक्रम सुरमई सबेरा और 9:15 पर लोक संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 9:30

उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा। इसके बाद 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगा मलय मरुतम। कल दिन में 11 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने और 12 आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा। दोपहर 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से में आप सुनेगा धारावाहिक पंचतंत्र की 5वीं कड़ी। 1 कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम की सभा में 5:02 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 5:30, 6:30 और 8:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम और 6:40 पर कार्यक्रम आजकल। इसके बाद 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 9:00 कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगा जय जय बंती। श्रोताओं, ये थे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: Hey guys!
6: Hi! Congratulations!
5: आज तो पार्टी चाहिए।
7: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, जलवायु

0: वायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु, भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। आज विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों को विश्व दूरसंचार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेटकर विश्व को परिवार जैसा बना दिया है, जीवन सहज हुआ है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं पहल करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में एक निजी रिसॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 में शामिल हुए। उन्होंने यहां लगाई गई विकास व वैचारिक प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
3: कम विकम में दुनिया का भय भला नहीं किया, रोटी भी नहीं मिली, अभ्यर्थी की स्वतंत्रता भी चली गई। अमेरिका जैसे देश आए, हमारे एक हाथ में रोटी है, एक में अभ्यर्थी की स्वतंत्रता है। मतलब पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भारत जिस पश्चिम के पीछे आंख बंद करके दौड़ रहा है, तब वो पश्चिम सुखी है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जरा अपने देश की तरफ भी तो देखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम राष्ट्र समाज जीवन की रचना करके देश को सुखी बना सकें, लोगों का कल्याण करें।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। सीहोर में आज अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुना जिले में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

गया, जिससे आम जन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: सर आप जाके बोल दो फैटर दे दो, कहना एसटी बच गई है। फैटर दे दो एसटी बच चुकी है।
1: ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सभी किसान भैया हरों को और प्यारी बिन्ना हरों को खूब स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें रानी बहन की दो ही हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम। कैसे का हाल चाल है भैया हरों और कैसे चल रही है खेती किसानी के सभी कामकाज? और भैया हरों पूर्व आकाशवाणी परिवार आपके परिवार की, आपके पशुधन की और आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना सोई करत है। मनो देखो भैया जेठ की तपत दोपहरिया देखो ऐसी हो गई है कि जैसे सूरज जो है आग बरसा रहा है, धरती पूरी तप उठी है बिल्कुल, है कि नहीं? और गांव-गांव में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, का अपने पशुधन और का अपने झाड़ झंकाड़ सब बिल्कुल ऐसे झुलस से जाते दिन में कि कछु पूछो नहीं। लेकिन हम सबके मिलके स्वास्थ्य और खेती किसानी दोनों को ध्यान सोई धन्य है। तो भैया हरो आप लोग तो काम कर रहे हूँ खेतन में, जोताई सोई लगी भई है और सभी जने इंतजार कर रहे कि तनक झला पानी गिर जाए तो तनक सी ठंडक हो जाए। और हमारी बिन्ना हरे तो पूरे घर परिवार के कामकाज में बिल्कुल अपने उमें लगी भई हैं। मनो दोपहरिया में अगर बिन्ना हरे ध्यान धन्य हैं अपन के भी कि अपने घर के जो मौड़ा मौड़ी हैं खास तौर पे बेका है, अब लग गई स्कूलों की छुट्टी है, तबे दिन भर देखो तो धमा चौकड़ी सोई मचात रहे थे। तो ऐसी धमा चौकड़ी ना मचाएं, ये खिलाने बहुत ही जरूरी है कि उन्हें घर में अच्छे से ध्यान से रखें और दिन में अच्छे से खिला पिला के सुला दें। मनो वे सोत कहाँ हैं, बे तो बह रहते होते भागत हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों के खाबे पीबे को ध्यान सोई धन्य है, उनको शरीर तपे नहीं, एक लाने जरूरी है छाछ लस्सी नींबू पानी ये सब देने हैं। लेकिन जे बात ध्यान धन्य है बिन्ना हरो कि आप औरों को कोई भी हाल में कहने चाहिए कि वो नहीं देने हैं, पेय पदार्थ नहीं देने हैं। और भैया हरो बहुत जरूरी है कि हमें अपनी भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लाने जरूरी है कि गुणवत्ता बना के रखने हैं। और किसान भैया हरो भूमि की उर्वरता बनाए के लाने जैविक खाद और जैविक कृषि को हमें ध्यान सोई धरने हैं।

0: बुंदेली समाचार।
1: अपन और सब मिलके सुन रहे हैं किसान भैया हरो आकाशवाणी केंद्र भोपाल को कार्यक्रम ग्राम सभा, और अब टाइम हो रहा है बुंदेली समाचारन को। तो सुनत हैं बुंदेली समाचार।

0: बुंदेली समाचार।
1: नमस्कार, डॉक्टर रानी रेखवार से सुन हैं आप बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो गई। श्री मोदी की यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर हो रही है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लाने अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे भारत से कपड़ा, चमड़ा

और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की पूरी संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र और ऑर्बिटर मिशन में भी शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है। जा दिवस को उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विश्व दूर संचार दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहो कि संचार क्रांति ने विभिन्न माध्यमों से दूरियां समेट के विश्व को परिवार जैसो बना दो है, जैसे जीवन सहज भाव है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तनाव, अनियमितता और असंतुलित भोजन उच्च रक्तचाप और बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य के लाने स्वयं पहल करबे और दूसरों को भी प्रेरित करबे को प्रदेशवासियों से आह्वान करो है। जनगणना को कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार के लाने घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों को विवरण जुटाओ जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वयं गणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जा पहल जनगणना अभियान के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानो जा रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सवेरे नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू करी गई। जहां ऐतिहासिक पल के गवाह बनबे के लाने सूर्योदय के संग गई, बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग्देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे हते। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना करोगा। SDM ने हरी झंडी दिखाकर जो विशेष वाहन को विकास खंड के गांवों के लाने रवाना करो। अभियान को उद्देश्य खरीफ सीजन की बुआई से पहले किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों और शासन की योजनाओं की जानकारी देनो हतो। और खबर अब मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्म की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू को असर बनुभव है। एक ही संगे बुंदेली समाचार भय समाप्त।

0: नमस्कार किसान भैया हरो, हेलो ग्राम सभा के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी को बहुत ही स्वागत है। और आज की हेलो ग्राम सभा में आप सभी सुन हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे फ़ोन करके सीधे बात कर सकते हैं स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से। आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अशोक वर्मा, जो विभागाध्यक्ष हैं कृषि संकाय में RNTU में। और देखो किसान भाइयों, अगर आपको समस्या से का समाधान लेना है तो आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर आपको मैं जल्दी से बताती हूँ, आप नोट कर लें, 0755-266-0902 और 266-0903। और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कृषि कार्य के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो जब तक हम करते हैं अपने डॉक्टर साहब से बात, तब तक आप लगाइए हमें फ़ोन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम। और आज हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपका सर, कि आप आएंगे और हमारे जो किसान भाई हैं उनको बताएंगे कि ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य, क्योंकि हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम सबका पसंदीदा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले
1: बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, किसान भाइयों को।
0: जी, अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन की बात करें तो ये एक समय ऐसा होता है कि जायद की फसलों के लिए बहुत समसामयिक माना जाता है। तो अभी कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे खेतों में हैं किसान भाइयों के?
1: देखिए अभी जो मुख्य फसल है जायद के समय में, तो अधिकतर क्षेत्रों में मूंग की फसल, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मूंग की फसल काफी क्षेत्र में बोई जाने लगी है। और

0: पानी की
1: हेलो
0: जहाँ पानी अच्छी मात्रा में है तो किसान भाई मूंग की फसल ले लेते हैं।
1: हेलो,
0: तो इसके अलावा भी
1: अगर
0: मान लो हम बात करेंगे तो बेलवर्गीय सभी फसल
1: उमा शंकर जी मिली जा रही है। आप इंतजार करिए, थोड़ा होल्ड करिए, मैं आपकी बात कराती हूँ।
0: बेलवर्गीय सभी फसलें सब्जियाँ इसमें ली जा रही हैं। और जहाँ तक कि हम फल फ्रूट की बात करें तो अभी आम अभी फलन पे है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ बीमारियां कीड़ों इसमें लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको देखते रहना, निरंतर निगरानी करनी है। और अमरूद की हम बात करें या फल की बात करें तो अमरूद में हमें देख रेख करनी है। और जिन खेतों में अभी खेत खाली हैं तो उनमें किसान भाइयों को मिट्टी के नमूने लेने हैं, और नमूने के आधार पर अगर मान लो उसका जो भी मिट्टी के नमूने से जो भी इसमें रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से
2: जैसे अनुशंसा मिले वैसी आपको काम करनी है।
0: मात्रा में
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर हम जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख रूप से मूंग को माना जाता है, तो अगर हमारे किसान भाइयों ने मूंग अगर रखी है तो उसके लिए क्या आप अनुशंसा करते हैं?
0: देखिए, अभी मूंग अगर मान लो समय से लगा दी होगी तो लगभग अभी 30 से 35 दिन की मूंग हो गई होगी, और फ्लावरिंग या फूल पे या फलियों पे होगी मूंग। तो उसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि अगर मान लो कोई बीमारी, उसमें निरंतर निगरानी करनी है, उसमें अगर मान लो कोई बीमारी या उसमें कीड़े का प्रकोप या माहू या सफ़ेद मक्खी का प्रकोप उसमें दिख रहा है तो उसमें आपको उचित अनुशंसित मात्रा में उसमें दवाई आपको स्प्रे करनी है। अगर मूंग ठीक दिख रही है, अगर मान लो आप एक या दो स्प्रे कर चुके हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे करने की आवश्यकता लगे, तभी आपको इसमें दवा की स्प्रे करना है। आपको किसान भाइयों को सिर्फ निगरानी करनी है। और फलियों में अगर मान लो कई बार देखा फलियों में फली इल्ली भी आती है उसमें, और माहू की समस्या इस समय जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी अगर मान लो बढ़ रही है, पानी देते हैं इसमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे समय में माहू और दूसरे कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। अगर जैसे बादल से हो रहे हैं या बादल का मौसम है या कहीं पानी गिर गया तो ऐसे समय में भी कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है।
2: बिल्कुल, आपने कहा कि अभी जैसे कि कभी भी बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ये जो अचानक से मौसम परिवर्तित होता है, ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें?
0: वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बताया कि किसान भाइयों को उसमें ऐसे समय में जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बादल हो गए या पानी गिर गया, तो ऐसे समय में किसान भाई को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो खेत की या वातावरण की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण बीमारी और कीटों का प्रकोप अधिक होने लगता है। तो ऐसे में किसान भाई फसलों के निरीक्षण करते रहे, देखते रहे।
1: अच्छा, उमा शंकर जी आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
0: अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसमें दवाई डालने की। अगर थोड़ा भी अगर मान लो उसमें कीड़े या बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं
2: तो तुरंत उपचार करें। बिल्कुल, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
2: उमा शंकर जी बोल रहे हैं सागर से?
3: जी।
2: तो क्या सवाल है आपका उमा शंकर जी? पहले ये तो बताइए सागर के मौसम का हाल बताया।
3: मैम अच्छी से गर्मी पड़ रही बहुत जम के।
2: बहुत गर्मी पड़ रही है?
3: जी जी मैम।
2: अच्छा, तो क्या सवाल कर रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ से?
3: मैम मेरा एक सवाल तो ये है कि मूंग तो है ही मेरी लगी हुई है थोड़ी सी, तो उसमें क्या थोड़ी पत्तियां सी सूख रही हैं।
2: और दूसरा
3: सवाल मेरा ये है मैम कि भिंडी लगाई है, भिंडी में सूख मतलब ये के जाला जाला सा बन जाता है और सफेद हो रही है भिंडी
2: जी। डॉक्टर साहब बताइए जरा।
0: देखिए, भिंडी में अगर मान लो जाला हो रहा है तो उसमें मकड़ी का प्रकोप होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, है ना। मकड़ी आप देखिए उसमें से पत्तियों के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपको लाल लाल से धब्बे जैसे दिख रहे होंगे, आप देखिएगा, है ना। तो ये रेड माइट होती है, उसके इलाज के लिए आपको एक माइटीसाइड दवा आती है उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप जैसे बोल रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद जैसे उस पर पत्तियों पे अगर ऊपर तरफ उसके लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू भी इसमें आती है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है या टेम्परेचर अधिक है और ह्यूमिडिटी अधिक है, तो उसमें ये फफूंद नाशक की आवश्यकता होगी आपको इस स्प्रे करने की। तो कार्बनिज्म 50% में आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के मान से आप उसमें स्प्रे कर दीजिए, तो ये अगर मान लो पाउडर मिल्ड्यू का उसमें प्रकोप हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा।
2: बिल्कुल, बात उद्यानिकी फसल की बात हो रही है।

0: भिंडी की बात हो रही है क्योंकि भोजन वाली बात है, ऐसे में जैविक क्या उपाय कर सकते हैं हमारे किसान?
1: देखिए, जैविक के लिए टेम्परेचर अधिक रहता है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैविक में नीम ऑयल का एक बहुत अच्छा, नीम ऑयल एक बहुत अच्छा
2: जैविक कीटनाशक, कौन बोल रहे हैं,
1: कीट नियंत्रण करता है।
2: जी,
1: ये 300 ppm, 1000 ppm और 10000 ppm, 3000 ppm में आता है।
2: तो लाइन पर बने रहिए, हम आपको
1: का स्प्रे आप अगर मान लो निरंतर करते रहेंगे 5 ml 1 liter पानी में मिला के, तो ये प्रकोप आपको पहली बात तो आएगा नहीं अगर मान लो जैविक तरीके से आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप निरंतर उसमें निगरानी करते रहिए। अगर हर 10 दिन 15 दिन में आप 15 दिन के अंदर नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो आपको उसमें कीड़े नहीं,
0: फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। तो हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो
3: नमस्कार, मैं नरेंद्र जी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर से।
0: नरेंद्र जी, सीहोर का क्या मौसम है, कैसी क्या फसलें लगी हैं?
3: मैम मूंग की फसल लगी है, मौसम तो मैडम वही है 40-42 के लगभग में टेम्परेचर चल रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, तो क्या प्रश्न है आज आपका?
3: मेरा ये प्रश्न सर से कि हमने मूंग लगाया था, उसमें सफेद मन का बारीक इल्लियां लग रही है और कुछ पौधे मैडम नीचे से आनी घानी से काले पड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, नीचे मूंग बारीक इल्लियां लग रही है। जी
1: देखिए, इल्लियाँ लग रही हैं तो उसमें एक एंडोस्कार्प नाम की दवा आती है 15.8 SC में, करीब 120 से 130 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं इल्लियाँ के लिए। और एक इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप इसको लगभग 90 ग्राम प्रति एकड़ के मान से, सेव जैसी दवा होती है आपने देखा होगा 5-5 SG में आती है, उसको आप स्प्रे कर दीजिए। इल्लियों का प्रकोप हो रहा है तो ये बिल्कुल चली जाएगी। एक क्लोरोट्रेनी प्रोल नाम की दवा होती है, इसको 18.5 SG,
2: नमस्ते,
1: 40 ml प्रति एकड़ के मान से इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इल्लियाँ आपकी, इल्लियों का प्रकोप,
2: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये तीन में से कोई भी एक दवा, तीनों नहीं डालनी, तीनों में से कोई भी एक दवा जो आपको,
2: आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करते हैं,
1: इसको आप आराम से डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे एक और किसान से हम बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे?
4: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार भैया।
4: डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से नियमित श्रोता हूँ।
0: जी जी, बिहार से फोन करे हैं
4: जी।
0: तो भाई बिहार में कैसा क्या मौसम चल रहा है, गर्मी पड़ रही है कि पानी गिर रहा?
4: बहुत गर्मी पड़ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, आम लीची सब गर्मी से सूखा जा रहा है।
0: सूखा जा रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब से प्रश्न है बिहार से?
4: जी, मूंग जो है ना पूरा पुष्ट दाना वाला फल नहीं आ रहा है।
0: अच्छा,
1: क्या पूछ रहे हैं थोड़ा सा एक बार?
0: दाना ठीक से नहीं आ रहा है मूंग में?
1: मूंग में दाना नहीं आ रहा है। देखिए, मूंग में दाना नहीं बनने का कारण है, आपने उसमें कुछ खाद वगैरह डाला था क्या मूंग में?
4: जैविक डाला था।
1: हाँ,
0: जैविक डाला था,
1: जैविक डाला था। देखिए, जैविक के साथ में थोड़ा सा पूरा जैविक खेती कर रहे हैं क्या आप?
0: बाद में जिंक मिला दिया था इन्होंने।
1: अच्छा, जिंक मिला दिया था। देखिए, मूंग में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है, फास्फोरस और पोटाश लगता है, है ना? तो अगर मान लो उसमें दाने कम बन रहे हैं तो अभी भी आप उसमें 0-52-34 का एक स्प्रे कर दीजिए, 0-52-34 का एक स्प्रे कर दीजिए तो दाने थोड़े अच्छे बन जाएंगे। कितनी फली अभी फूल आ रहे हैं कि अभी फली
4: लेकिन?
1: हाँ, तो उसमें 0-52-34 आप एक स्प्रे कर दीजिए, 2 ml 1 liter पानी के मान से, है ना? ये घोल को इस पर स्प्रे कर दीजिए पूरी फसल पे, तो दाने अच्छे बन जाएंगे और भर के आएंगे, है ना?
4: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।
1: हाँ, उसमें क्या खाद की कमी लग रही है मुझे, जैसे आप बता रहे हैं खाद की कमी है, है ना?
0: तो हमारे जो जागरूक किसान हैं वो लगातार हमें फोन कर रहे हैं और आकाशवाणी केंद्र भोपाल से हमारे किसान भाई सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर आप सीधे हमारे स्टूडियो में उपस्थित।
2: हेलो
5: हेलो,
2: हाँ, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: दीदी मनोज नाम से बोल रहा हूँ, शिवपुरी मध्य प्रदेश।
2: अच्छा मनोज जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
5: दीदी दीदी जी, आपकी आवाज रेडियो पर सुनाई दे रही, जब आप कहती हो कि आप लाइन पर रहिए तो इस पे आप गौर करें आप।
2: हाँ हाँ, आप अभी लाइन पर बने रहिए, हम आपकी बात करवाते हैं।
5: ठीक है दीदी।
0: हम उनसे बात करते हैं।

0: हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल।
0: जी बताएं भैया, क्या हाल चाल
1: जी
0: है?
1: जी जी बिल्कुल, बहुत ही बहुत बढ़िया है दीदी। तो बता दें जल्दी बंदी, गांधी पार्क के मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है दीदी मनोज नामदेव।
0: अरे नाम दो भैया, कैसे हैं? और शिवपुरी को कैसो, का हाल चाल चल रहे हैं? पानी यानी गिर रहा हो कि नहीं गिर रहा हो?
1: हाँ दीदी, पाई माई तो कुछ नहीं गिर रहा हुआ है, और बिल्कुल जो समझ लो कि गर्मी पड़ रही बहुत जोर से। तो
0: है
1: बस हमारे जो टिकटिकी लगी थी कि रविवार आ जा, सो हेलो हेलो ग्राम सभा फोन लगा दे।
0: बिल्कुल मनोज भैया, हम भी पूरी बिल्कुल हफ्ता भर इंतजार सोई करत है कि भैया हमारे भैया हरों से बातचीत हो जाए तो और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो आज डॉक्टर अशोक वर्मा बैठे हैं अपने सामने, और ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कृषि कार्य में प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
1: जी बिल्कुल दीदी, हम जो प्रश्न कहानों के हमारे खेत में भटा लगे थे और अबे भी लगे, लेकिन क्या हो रहा हुआ है कि अबे 8-10 दिन पहले थोड़ा बूंदा बांदी हो गई थी, सो बाद ना से भटे को ऐसा मर्ज बिगड़ो आए कहानों के भटा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल हल्के हल्के से रह गया। कितना कितना देखो सो वहां में थोड़ी सी इली भी लग रही है।
0: तो कितने
1: तो
0: दिना
1: हमने
0: के हो गए
1: सोची
0: भट्टा आपके?
1: दीदी क्या कह रही हैं आप?
0: कितने दिनों के हो गए हैं?
1: दीदी अबे तो भटा खूब तोड़ रखे, हम बेच में जाऊते आए।
0: अच्छा, तो फलन पे
1: हाँ
0: है पूरी तरीके से।
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल
2: देखिए मनोज जी, उसमें
1: जी
2: दो
1: सर।
2: चीज़ हो सकती है। एक उसमें ये जो ये आपके जो सब्जी है फल है उसमें मक्खी आती है ना, मक्खी
1: ठीक
2: कह रहा
1: है
2: हूँ आपके,
1: ठीक
2: इल्ली आती है ना, फ्रूट उसको बोलते हैं फ्रूट बोरर है
1: है
2: ना,
1: ठीक
2: और एक शूट बोरर होता है। दो तरह के इसमें कीड़े हैं, फ्रूट और शूट बोरर। तो इसके लिए आपको अगर मान लो पत्तियां आपको दिख रही हैं मुरझी हुई हैं, ऊपर की तरफ की पत्तियां अगर मान
1: बिल्कुल
2: लो
1: सही
2: मुड़
1: बात
2: रही
1: है,
2: हैं
1: बिल्कुल
2: या
1: सही
2: मुरझा
1: बात
2: रही हैं, तो उसमें ये इल्ली का प्रकोप है या शूट एंड फ्रूट बोरर। तो
1: ठीक
2: उसमें
1: है
2: आपको दवा डालनी पड़ेगी, और खाद पानी अगर मान लो आपने दिया है, खाद
1: ठीक है।
2: पानी आपने अगर मान लो दिया है, DAP वगैरह दिया है, तो आप जैसे बता रहे हैं उसमें बढ़वार नहीं हो रही फलों की, क्या
0: जी हाँ,
2: है
0: इनके
2: ना?
0: कम फल लग रहे
2: तो
0: हैं।
2: उसमें बढ़वार नहीं हो रही, तो DAP तो आपने डाल चुके हैं, तो उसमें आप 052-34 और 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपके फल फूल अच्छे लगेंगे। और अगर मान लो उसको इल्ली का प्रकोप है, तो उसमें कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, इंडोस्कार्ब हो गया या आपका क्लोरोपायरीफास, एक स्प्रे आप उसमें कर दीजिए, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें एक स्प्रे कर दीजिए, अल्लाह इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो, है ना? बाकी उसमें कोई समस्या आप देखते रहेंगे, तो उसके हिसाब से उसमें उसमें नियंत्रण के उपाय करते रहिए।
0: बिल्कुल। एक और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हेलो
4: हाँ जी नमस्कार,
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: मैं ग्राम बड़ा गांव तहसील कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
0: जी धाकड़ जी, कैसे हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: बढ़िया बढ़िया। बताइए भैया, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न ये है, अनार का पेड़ है अपने, उसमें अनार अनार के पेड़ में इल्ली है।
2: अच्छा,
0: कितने दिन का पेड़ हो गया है आपका?
4: जो हो गया 4-5 साल का हो गया।
0: जी
2: खेती कर रहे हैं क्या आप उसमें, कि ज्यादा पेड़ हैं कि एक आध दो ऐसे हैं?
4: एक आध दो ही है घर में,
2: अच्छा
4: है अपने घर में मकान पे ही बोप रहे हैं।
2: हाँ।
4: जी
2: तो देखिए अगर फल के अंदर आपके इल्ली आ रही है, तो उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड आप उसमें, इल्ली वाली आती है जैसे क्लोरोपायरीफास से भी हो जाएगा, है ना?
4: जी
2: क्लोरोपायरीफास दवा आती है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए, तो इससे इल्ली का प्रकोप चले जाएगा। एंडोस्कार भी आप डाल सकते हैं, वो दोनों दो दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए, तो इल्ली ख़त्म हो जाएगी। उसमें क्या फल के अंदर कुछ स्पॉट जैसे भी दिख रहे हैं क्या, भूरे भूरे?
4: हाँ जी सर, मतलब जो अनार को अपन मतलब ये फोड़ के देखते हैं तो बाद में काला काला निकलता है।
2: हाँ, तो उसमें एक बीमारी भी होती है,
4: अच्छा
2: एंथ्रोग्नोस आता है उसमें। अगर बीमारी
4: जी
2: है तो उसके एक फंजीसाइड भी उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, है ना? प्रोपिकोनाजोल एक स्प्रे कर दीजिएगा, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, तो वो अगर कोई फफूंद नाशक फफूंद टाइप की बीमारी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
2: ठीक है
0: ये जो फल और सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे किसान भाई जैविक उपाय करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा
2: जी।
0: रहेगा। तो जैविक उपाय करते समय किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें?
2: देखिए जैविक उपाय किसान भाई अगर मान लो करना चाह रहे हैं, तो उसको शुरू से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में जैसे किसान भाई सबसे पहले अगर मान लो उसको बीज को लगा रहे हैं, तो उसमें बीज उपचार कर दें
0: शुरू से
2: पहले।
0: ध्यान रखें।
2: हाँ
0: बिल्कुल, आपकी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?

0: हेलो,
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से।
1: अच्छा जी, साहू जी गंज वासोदा से बोल रहे
0: दीदी,
1: हैं।
0: कैसी हैं आप?
1: बढ़िया भैया, बढ़िया। आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। हेलो ग्राम सभा, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
0: हमारा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है, मूंग लगी हुई है हमारी
1: जी,
2: हाँ जी।
0: तो उसमें इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, तो
2: हाँ
0: ऐसी कौन सी दवा डाली जाए जिससे निजात हो?
1: जी
2: देखिए, एक आध स्प्रे कर चुके हैं क्या उसमें? एक आध दवाई डाल चुके
0: हाँ
2: हैं?
0: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार। एक आध दवाई डाल चुके हैं क्या उसमें कोई सी?
0: नहीं अभी तो नहीं डाली, अभी नहीं दिख रही थी, अभी इल्ली दिख रही है, हम कल से देख रहे हैं तो इल्ली दिख रही है कहीं कहीं।
2: तो एक क्लोर ट्रानिप्रोल आती है दवा, है ना? वो मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, वो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना? 18.5 SC उसका उसमें रहता प्रतिशत रहता है, 40 मिलीलीटर एक एकड़ में आप इसको स्प्रे कर देंगे। 100 ml की छोटी डब्बी आती है, तो वो करीब उसमें जाएगी, 100 1 हेक्टेयर में जाएगी, 2.5 एकड़ में जाएगी। उसका पहले स्प्रे कर दीजिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, एक बारिश में ही आपका काम हो जाएगा, है ना? अगर वो नहीं है अवेलेबल तो इंडोस्कॉर्प भी यूज़ कर सकते हैं या स्पेनोसिड भी यूज़ कर सकते हैं आप। दो तीन तरह की दवा में से कोई सी भी एक डाल दीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी।
1: ये आप जब दवा की मात्रा बता रहे हैं और उसके डालने का तरीका भी बता रहे हैं, कभी कभी हमारे किसान भाई सोचते हैं ज़्यादा दवा डालते हैं।
2: हाँ, ये
1: इसके लिए आप थोड़ा सा
2: देखिए
1: बताएं।
2: देखिए, ये किसान भाई को बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कभी भी जो अनुशंसित मात्रा है वो उस मात्रा से कभी भी दवाई ज्यादा ना डालें,
1: अपने मन से कुछ ना करें।
2: हाँ, दवाई ज्यादा ना डालें ना कम डालें।
1: बिल्कुल,
2: कम डालेंगे
1: तो फायदा नहीं होगा,
2: तो फायदा नहीं होगा, और ज्यादा डाल देंगे तो रेजिस्टेंस पावर
1: बिल्कुल
2: डेवलप हो जाएगा।
1: एक फोन और हम ले लेते हैं आपकी आज्ञा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और किसान भाई। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: नमस्कार महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी तोमर जी, कैसे हैं?
3: आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी,
1: भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। भैया क्या सवाल है आज का?
3: सवाल मेरा ये है कि मैंने कद्दू वर्गी सब्जी लगाई, उसमें कद्दू में फूल आ रहा, फल नहीं भर रहे हैं।
1: अच्छा, कद्दू वर्गी फसल में फूल आ रहा है, फल नहीं आ पा रहे हैं। जी बताएं डॉक्टर साहब।
3: कद्दू की फसल में?
2: हाँ, कद्दू की फसल में ना, तो इसमें खाद वगैरह आपने अच्छे से डाला था खाद वगैरह?
3: बिल्कुल बिल्कुल, जैविक खाद डाला, कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में डाला।
2: अच्छा, तो उसमें फल मतलब जो फूल से फल जो बनता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्या?
3: हाँ फूल बन रहा है लेकिन फल एक भी नहीं बना अभी तक।
2: नहीं, इसमें क्या जनरली ये सब्जी वर्गियों में फसलों में क्या होता है, हमें ये खाद की मात्रा में अच्छी देनी पड़ती है ना? अगर याद उसमें क्या भूरे भूरे कुछ इसमें स्पॉट हो रहे हैं या सड़ रहे, सड़न जैसी टाइप की दिख रही है क्या?
3: नहीं कोई नहीं, कोई रोग नहीं लग रहा है, केवल अच्छी तरह से बढ़ रहा है, फूल आ रहा है।
2: हाँ, या तो ठीक है, आप फिर उसमें अगर नहीं है तो कुछ खाद वाली चीज जैविक डाल रहे हैं तो आप इसमें सागरिका एक दवा आती है समुद्र घास से जो बनती है, उसको आप 5 मिलीलीटर स्प्रे कर दीजिए। उसमें क्या सभी तरह के पोषक तत्व, मुझे जो लग रहा है पोषक तत्व की कमी है, तो उसमें सभी तरह के पोषक तत्व, जैविक दवा है, जैविक तरह की वो खाद की दवा है, तो उसको आप डाल देंगे तो उससे आपका ठीक हो जाएगा।
1: बिल्कुल, पोषक तत्वों की बात हो रही है तो जब अगर हम फसल बोते हैं तब इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बीजोपचार अच्छे से हो। तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: जगवान सिंह बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: ग्राम सगोरिया, तहसील बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से जगवान सिंह ठाकुर बोल रहे हैं।
1: जी भैया ठाकुर साहब, कैसे हैं?
4: मैडम आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं भैया। तो क्या प्रश्न है आज आपका?
4: प्रश्न ये है कि थोड़ी गिलकी के सैकड़ा पेड़ लगा है 100 किलो।
1: हाँ हाँ,
4: उनमें फूल आ रहा है और मुड़ जाके झड़ रहे हैं।
1: जी, गिलकी में फूल आके मुड़ के झड़ रहे हैं।
2: नहीं, कौन से वाले झड़ रहे हैं? एक उसमें दो तरह के फूल होते हैं, एक मादा फूल एक नर फूल।
4: अब ये तो डॉक्टर साहब नहीं जान।
2: अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फल फल बन रहे हैं क्या, गिलकी बन रही है?
4: नहीं फल नहीं बन रहे, फूल लग जाते हैं और वो झड़ जाते हैं।
2: अच्छा देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ पोषक तत्व की कमी हो सकती है, तो पोषक तत्व के लिए आप जैविक तो नहीं कर रहे हैं?

0: नहीं जेब नहीं कर रहे।
1: हाँ तो उसमें आप 1919-19 का स्प्रे कर दीजिए, है ना। 1919-19 एक खाद आता है तरल वाला, उसको आप स्प्रे कर दीजिए, दो दो ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। और सब्जियों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले तत्व भी आते हैं जिसमें सभी तरह के तत्व होते हैं, इस तरह का कुछ उसमें खाद पानी न्यूट्रिशन डाल देंगे तो फल नहीं, फल गिर रहा है या फूल से फल नहीं बन रहा है तो उसमें पोषक तत्व की कमी है। ये आप
2: एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नर फूल और मादा फूल, अभी जैसे हमारे किसान भाई कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो जरा इसकी पहचान बता दीजिए।
1: देखिए वो देख के समझ में आ जाता है, नर फूल होगा जो वो खड़ा में ऐसे ऐसे में रहेगा और उसमें मतलब बड़ा रहेगा, उसमें फूल दिखेगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। और जो मादा फूल थोड़ा छोटा रहेगा और उसमें आप देखेंगे कि फल जैसे ही फूल खत्म होगा तो उसमें ये गिलकी या उसमें फल बन जाएगा,
2: छोटा सा बनना दिखेगा। हाँ, वो उसमें है ना। हाँ, तो हमारे किसान भाई इस बात की जाँच कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: नमस्ते।
2: नमस्ते भैया,
3: संजू अहरवाल जी बोल रहे हैं, कर जिला सागर से।
2: जी संजू भैया बताएं क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया है दीदी, गर्मी पड़ रही है।
2: गर्मी तो पड़न तो भैया बिल्कुल, अपनी खेती किसानी सोई अच्छी हो जाए है। तो बताओ क्या प्रश्न है आज?
3: प्रश्न जो है हमारे बिही के कुछ फल गिर रहे हैं और अनार के, तो किस कारण से गिर रहे हैं?
1: जानकारी क्या
2: है? बिही और अनार के, अमरूद और अनार।
1: अच्छा अमरूद के, ये गर्मी वाला फल लिया क्या आपने?
3: नहीं गर्मी वाले नहीं लिए, अभी फल अभी फूल ही है।
1: अच्छा फूल है। देखिए अभी तो वैसे अब अगर ये आप ठंडी वाली बहार लेना, दो बहार आती है, एक तो अभी चल रही है और एक आती है ठंडी में, है ना। तो ये अभी अभी आप कितने सभी फल पे हैं कि कम हैं अभी?
3: सभी फलते हैं सर, सभी के फल झड़ रहे हैं।
1: नहीं उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ बीमारी टाइप की हो या
2: अभी आप अभी तक आपने कितने उसमें से फल ले चुके हैं?
3: उनसे तो हम हर साल लीना को लेते
2: कितने साल मतलब पुराने हो गए आपके पेड़
3: के नहीं लेते हैं।
1: कितने कितने साल पुराना पौधा आपका?
2: हेलो
1: हेलो,
3: गर्मियों के फल नहीं लेते हैं, जो ठंडी में और वर्षकारी में जो निकलते हैं उनके फल लेते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, तो देखिए अभी अगर उसमें ज़्यादा फल नहीं है तो उसकी अभी कटिंग कर दीजिए, है ना। ये उचित समय है, मई जून में, मई में कटिंग हो जाती है और ऊपर से उसमें कॉपर एक्सोक्लोराइड को
3: बहुत ज्यादा है।
1: हाँ
3: इसीलिए काट नहीं पा रहे हैं।
1: अच्छा फल हैं, तो फल हैं तो फिर उसमें मुझे जो लग रहा है कि इस टाइम में क्या है, अमरूद में फल कम आते हैं, है ना, या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इसके वजह से भी गिर सकते हैं। और उसमें एक दूसरा कारण है कि अगर मान लो आपके पोषक तत्व की कुछ कमी हो सकती है, इस वजह से भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और फल रोक नहीं पा रहा है, तो इसके कारण से भी दो कारण से गिर सकते हैं, एक टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एक पोषक तत्व की कमी है। अच्छा ज़्यादा फल है तो उसको अभी फल लगे रहने दीजिए, जितने ले सकते हैं उसमें ले लीजिए, कुछ एक आध आप पोषक तत्व डाल दीजिए उसमें, है ना। उसके बाद जब फल ख़त्म हो जाए तो उसकी कटिंग कर दीजिए ज़रूर, है ना। कई बार क्या होता है अपन कटिंग करते नहीं है, ये अभी जैसे फल ख़त्म हो जाए इसकी कटिंग कर दीजिए तो आपके बारिश में उसमें कोपले आ जाएंगी, और बारिश में पूरी कोपले आने के बाद नवंबर दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर से उसमें फल फूल लगने लगेंगे, तो वो फसल ठीक रहेगी आपके।
2: बिल्कुल
1: लिए।
2: बिल्कुल। और हमारे एक और किसान भाई से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार
4: जी, मैं जगत सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया, तहसील बीगमगंज, जिला रायसेन।
2: अच्छा जी रायसेन से बोल रहे, क्या प्रश्न है आपका?
4: जी अभी मूंग में फूल आ रहा है, ऐसी कौन सी दवाई कि थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ये खट्टा फूल आ जाए?
2: अच्छा इकट्ठे फूल आ जाए, थोड़े थोड़े आ रहे हैं।
1: देखिए एक ह्यूमिक एसिड आती है ना, ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी आती है, बढ़ जाते हैं फल फूल, है ना। ये तो ये क्या बोलते हैं इसको, टॉनिक टाइप का बोलते हैं इसको अपन अपनी भाषा में, ये जाइम या कोई भी जाइम वाला चीज़ है ये, है ना। ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए तो उस फल फूल उसमें बढ़ जाएंगे, है ना, अगर फूल पे है। और एक 0-52-34 का स्प्रे के साथ में भी कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड को, तो उससे आपके फल फूल अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है, फल फली अच्छी आएगी, दाने अच्छे बनेंगे।
2: बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार जो है वो अपनी बात हमसे कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अगर कुछ खेत अगर खाली हैं हमारे किसान भाइयों के, तो वो किस तरह से खरीफ की तैयारी कर सकते हैं?
1: देखिए अभी खेत खाली है तो ये समय सही उचित समय है कि इसका सॉयल का सैंपल ले लें या मिट्टी का परीक्षण के लिए उसका सैंपल ले लें, है ना। और

0: 3 साल में कम से कम आप एक बार जरूर सॉइल का सैंपल लेके उसके भूमि का उसके पोषक तत्व की जांच जरूर कराएं। इससे क्या होता है कि आपके ज़मीन में क्या किस चीज़ पोषक तत्व की कमी है, उस पोषक तत्व की मात्रा ही आपको डालनी चाहिए। क्योंकि आपके ज़मीन में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन कम डालना है, फास्फोरस ज़्यादा है तो फास्फोरस कम डालना है। तो भूमि का आप तो सबसे पहले उसका वो करा लें, टेस्ट
1: परीक्षण
0: करा
1: करा
0: लें।
1: लें।
0: हाँ,
1: हाँ।
0: सॉयल टेस्टिंग करा लें उसकी। दूसरा, अभी जैसे आपने अगर मान लो खेत खाली है, खेत छोड़ के रखा है या खरीफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार प्लाउ 3 साल में एक बार, जो अनुशंसा है 3 साल में एक बार प्लाउ गहरी जुताई जरूर करा लें। उससे जो आपके जो कीड़े जो निरंतर चलते रहते हैं खेतों में, या बीमारियां हैं जो ऐसी जो हर हर साल आपको बीमारी कीड़े आते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। पलट इसको 3 साल में एक बार प्लाव अनुशंसित वैज्ञानिक तरीका है, उसमें आपको जरूर कराना है।
1: बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या समसामयिक सलाह देते हैं कि इस गर्मी में कैसे अपनी फसलों को रखें? अच्छा,
0: देखिए, आप सबसे पहले तो जैसे मूंग है, तो मूंग में आपकी अभी फली बन रही होगी, इस पर आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए।

0: बीमारियां हैं जो ऐसी जो हर हर साल आपको बीमारी कीड़े आते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। पलट इसको 3 साल में एक बार पलाव अनुशंसित वैज्ञानिक तरीका है, उसमें आपको जरूर कराना है।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या समसामयिक सलाह देते हैं कि इस गर्मी में कैसे अपनी फसलों को रखें? अच्छा
0: देखिए, आप सबसे पहले तो जैसे मूंग है तो मूंग में आपकी अभी फली बन रही होगी, इस पर आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए, और स्वस्थ है तो उसमें कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और सब्जियों का भी, आप सब्जियों का जैसे अभी ये जितनी बेलवर्गीय फसलें हैं, फल हैं, और इसको आप निरंतर निरीक्षण करते रहिए, और कोई समस्या आने के बाद ही उसमें दवा डालिए।
1: बिल्कुल, पहले से नहीं डालिए,
0: पहले आप जैविक तरीका अपनाइए, जैविक से कंट्रोल हो जाता है। अगर जैविक तरीके से उसका उपचार नहीं होता तो हमें केमिकल पर जाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, समय की सीमा का ध्यान रखना है, हेलो ग्राम सभा को हम यहीं देते हैं विराम। जिन किसान भाइयों ने हमें फोन किया उनको हृदय से धन्यवाद, और उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज का हेलो ग्राम सभा का विषय था ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ थे हमारे साथ में डॉक्टर अशोक वर्मा, और कार्यक्रम अधिकारी थे श्री चंद्रशेखर शर्मा, ड्यूटी ऑफिसर बबीता भंडारी, कंट्रोल रूम अधिकारी किशन गुप्ता और विजय कामले, उद्घोषक हमारे साथ थी सरिता सिंह, और मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। तो चलते चलते कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको दे दें, कल सुबह कृषि चर्चा में 6:45 पर सुबह जरूर सुने उद्यान लगाने की तैयारी कैसे करें डॉक्टर विजय अग्रवाल से, और लोकरम फरमाइशी हमारे जो है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम जरूर सुने। तो अब हो रही चलबे की बिरिया, दे रानी बहन को अनुमति, राम राम जय सीताराम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
4: तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले आने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो

0: चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में एएसआई और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि एएसएमएल अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई। और साथ साथ विश्व में जो जो अभी आर्थिक स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुई है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर

0: के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तोहिन, की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए वहां करके एक बात कही कि WAH जैसे वाटर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इसमें काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहाँ पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ पर। मुझे याद है जब मैं वहाँ स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर थे लेफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर, 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूं कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी, और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का, उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टिनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
0: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था, और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो है ही है वहां पर, बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर। तो अब यह है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए, और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स कहीं एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि

0: तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा 1-2 साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन, नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं। खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे हैं और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी, धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को

0: इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
0: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है। और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में, ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
0: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है, जिनके तहत इंटरेक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफ़ी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
0: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की, AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
0: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं। और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए, इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं। और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके। और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है, किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है, उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमसी योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएम श्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी

0: जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार। बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं। ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया, जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को तो लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
2: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
4: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले गिर जाएगा।
5: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इससे हमको एक्सपीरियंस

0: लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी भोपाल की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। स्वर हैं जसपाल सिंह और हिमलता के, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म चित्तचोर से। स्वर हैं यशुदास और हिमलता के। गीत और संगीत एक बार फिर रविंद्र जैन का।

0: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पना

0: अवसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें

ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान

जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है, और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता, और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसायल, सेमीकंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नक़्लो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वज़ीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी

0: आज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहां मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे। नामजद वज़ीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वज़रा की फहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
2: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले 9 तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ ज़िले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि

0: घूम रही हैं?
1: कई वर्ष हो गए, आपके बहुत मित्र हैं।
0: स्वाभाविक है,
1: अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानूंगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
1: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
1: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
1: आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा हो कर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? ओह, कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
1: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं, आप पीती हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
2: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता, बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, चिप्सियों के साथ, कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं, लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती, दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं, एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता, छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप, आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज।

0: प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहाँ गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर डिक भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरे बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में, माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूछे, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बाकी होती।
0: प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वैश्या है।
0: मैं
1: कहती हूँ कि चलो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
0: नहीं,
1: जाते हुए नहीं।
0: सांत्वना,
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो विवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सालियों से रहा है, जिनके लिए तेह है सब कुछ है, लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछो,
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूँ ये पूछने का साहस है तुम्हें? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूँ। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: छद्म है, छद्म। सुनो, कहाँ गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई, कंडक्टर

0: सहयात्री, मुझे भी अभिचारी नहीं समझते और शायद स्थिति से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सच्चा दिल इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।

0: आज बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
0: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
0: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
0: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
4: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें यह लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
4: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
4: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
4: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
4: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद?
5: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
4: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
5: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
4: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
5: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बस पर लेटा लेटा।
4: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे, बेचारे परवर्टेड।
5: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता

0: क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
0: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
0: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
0: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
0: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
0: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना
1: पीछे हट जा, मैं कैसे हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा, ओह ये माथा तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
2: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत, भाई बधाई।
0: निगम इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
2: हाँ, वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिस्टर थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
2: हो आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में हलन डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
2: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
0: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
0: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
0: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, बिछोह का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में बिछोह का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
0: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया, लाइए।
4: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
3: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
0: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

यूट्यूब पे अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में अपने कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।